0: लिसनर्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू एमओपी रेडियो 107.8।
1: हाय, हेलो, नमस्ते, वणकम, प्रणाम। आप सबका स्वागत है एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8 की हिंदी सेवा में।
2: आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर निर्मला एस मौर्य, जो हैं राष्ट्रीय धरोहर राष्ट्र की गौरवशाली संस्था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान की कुल सचिव, उस पद पर आने वाली पहली महिला।
1: तो दोस्तों, एक इंटरव्यू यानी साक्षात्कार तो बनता है,
0: उनका इंटरव्यू लेंगे आज हमारे हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर सुधा त्रिवेदी और प्रवक्ता डॉक्टर अनुपमा।
2: रंग से हमारा जीवन काफी गहराई से जुड़ा हुआ है, रंगों का स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है। वैज्ञानिक स्तर पर रंगों से लाभ पर लंबे समय से शोध हो रहा है। शोध के अनुसार प्रकाश हमारे शरीर को आंखों के द्वारा भेद कर पेट्यूटरी ग्लैंड का उत्तेजित करता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेष हार्मोन्स को सर्वा होता है। यह शरीर द्वारा रंगों के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया होती है। रंग चिकित्सा में शरीर में समस्या के कारण को रंगों का अतिरिक्त एक्सपोजर करके दूर किया जाता है। उदाहरण के लिए स्पेक्ट्रम का आखिरी रंग लाल उत्तेजित करता है, तो नीला रंग गहन शांति देता है। मानसिक चिकित्सालयों में लाल अथवा नारंगी रंग का प्रयोग कष्ट उत्पन्न करने वाला पाया गया है, लेकिन नीला रंग शांति देने वाला था। रंग खाद्य पदार्थ का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। धूप हमारे लिए पौषिक होती है। शोध द्वारा सिद्ध हो गया है कि पूरे स्पेक्ट्रम का शरीर पर अत्यंत लाभकारी प्रभाव होता है। इससे हमारे शरीर का एंडोक्राइन तथा सक्रिय होता है तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र का निर्माण भी होता है। लाल रंग हमारी इंद्रियों तथा भाव भंगिमाओं को उत्तेजित करता है। यह शक्ति, ऊर्जा तथा जीवन के प्रति उत्साह को दर्शाता है। सकारात्मक स्तर पर यह जीवन में ताकत, खुशी, सुख एवं प्रेम को देने वाला होता है। अग्नि का प्रमुख गहरा लाल रंग मनुष्य की आदमी भावनाओं को जागृत करता है। गहरा लाल एक और खतरा दिखाता है, वहीं सौभ्य गुलाबी रंग मातृत्व की भावना जगाता है। इस रंग का नकारात्मक पक्ष यह है कि यह दुस्साहस पैदा करता, अनियंत्रित उन्माद, वांस एवं क्रोध को जन्म देता है। इस रंग का प्रयोग जीवन शक्ति के कमजोर होने, रक्त संचार धीमी होने के स्थिति में किया जा सकता है। लाल रंग मानसिक रूप से परेशान तथा संयुक्त तकलीफ वाले व्यक्तियों को ज्यादा परेशानी देता है, अतः इस रंग का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के आसपास बहुयता से नहीं करना चाहिए। यह भी रंगों में सबसे धीमी वाइब्रेशन वाले रंग है, जो भावनाओं को अन्य रंगों की अपेक्षा जल्दी प्रभाव करता है। इसमें शोध के दौरान पाया गया कि जब कोई व्यक्ति लाल रंग के संपर्क में आता है, तब एंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय हो जाती है। यह काम कुछ सेकंड के ही समय लेता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एड्रेनालिन का सर्व बढ़ जाता है तथा सर्व रक्त में मिलकर अपना प्रभाव उनके स्तर पर दर्शाता है। रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त की बहाव तीव्र हो जाती है एवं श्वास की गति बढ़ जाती है। स्वाद कलिक अति संवेदनशील हो जाता है तो तथा भूख भी बढ़ जाती है। हमारी सूंघने की शक्ति भी बढ़ जाती है। लाल रंग भूख बढ़ाने में सहायक होता है। इस कारण कई महंगे रेस्तरां लाल मेजपेश तथा लाल नैपकिन का प्रयोग करते हैं। लाल रंग के कारण हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होती है तथा लीवर को ताकत देता है। यह लाल रंग शरीर में जम फैलाता खनिज तत्वों को तोड़कर निष्कासित करता है। खून की कमी, अस्थमा, कब्ज, लकाव, तपेदिक में लाल रंग लभाकर होता है। भावनात्मक कष्ट, उन्माद, बुखार, सूजन, उच्च रक्तचाप, मानसिक रोग की स्थिति में लाल रंग से बचना बेहतर है। लाल रंग पसंद करने वाले लोग बहुमूर्खी होते हैं। इनका मूड निरंतर बदलता रहता है तथा आक्रामक एवं आवेगमक पूर्व होता है। ये आश्वाद होने के साथ शिकायत भी होते हैं तथा निरंतर आवाज उठाते रहते हैं। पुरुष पलि मिश्रित रंग की ओर सहज आकृष्ट होता है, वहीं महिलाओं को नीला मिश्रित रंग अपनी ओर खींचता है।
3: नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और ये हमारे साथ हैं यहाँ दीक्षा और नम्रता। तो मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप कुल सचिव बनी हैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जैसे इतने राष्ट्रीय महत्व की संस्था में, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पहली महिला बनी है कुल सचिव इस संस्था में।
4: सुधा जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और कुछ बोलने का मौका दिया। हाँ, ये तो जरूर सही बात है कि मैं पहली महिला कुल सचिव हूँ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में। लेकिन मुझसे पहले प्रधान सचिव के पद पर श्रीमती वेंकायमा जी रही हैं, थोड़े समय के लिए आई थी वो। तो सभा ने शायद मुझे इस लायक समझा, वहाँ के जो प्रशासन अधिकारी हैं उन्होंने इस लायक समझा कि मैं कुल सचिव के पद पर रहते हुए और हिंदी के नाम पर काफी कुछ कर सकूं, हिंदी को बढ़ावा दे सकूं, हिंदी को रोजगार परक बना सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप भी दक्षिण में हैं, तो जो ये हिंदी तर प्रदेश माने जाते हैं, और अब करीब 30 वर्षों के पश्चात जो मैं यहाँ देख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 1982 में आई थी और अब 30 साल हो गए करीब मुझे, तो मैंने हिंदी को हर क्षण बदलते हुए देखा है। और जैसे जैसे हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, उसमें दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा और शोध संस्थान है, और हमारी मैडम भी यहीं की, वहीं की छात्रा हैं केरल की संस्थान की, तो ये सभा के लिए जी ये बड़े गर्व की बात है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के जो और भी केंद्र हैं, कर्नाटक में है, केरला में है, आंध्र प्रदेश में है, और मद्रास तो आप जानते ही हैं, त्रिची में है, अभी तो विजयवाड़ा शुरू हुआ है।
5: अच्छा।
4: तो उसके बाद बेंगलोर शुरू हुआ है पीजी स्नातकोत्तर स्तर पर। तो ये क्यों शुरू हुआ, इसका कारण है कि अब दक्षिण में भी हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता हो रही है और सबको ये समझ में आने लगा है कि हिंदी जाने बिना उनका गुजारा नहीं है।
5: बहुत अच्छी बात है।
4: तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं यदि वहाँ बैठ करके दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो कि बहुत ही स्थापित संस्था है
5: जी,
4: तो बैठ कर कुछ कर सकूँ हिंदी के लिए, ये मेरे लिए और हम सभी हिंदी भाषी और जो हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी को अपने अपना रोजगार बना रहे हैं
5: जी, जी,
4: उनके लिए
5: गर्व की बात। बहुत अच्छी बात है। उच्च शिक्षा शोध संस्थान में होने के बावजूद जैसे कि आप तो पढ़ाने वाले शिक्षकों को तैयार कर रही हैं और उनके माध्यम से आप रूट तक, जड़ों तक पहुंच रही हैं, तो इस तरह से उच्च शिक्षा शोध संस्थान भी जड़ों तक कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है हिंदी के प्रचार प्रसार में, ऐसा
4: नहीं जुड़ा? देखिए, ऐसा है कि सभी लोगों को पता नहीं, जानकारी है कि नहीं, बच्चे भी यहाँ बैठे हैं
5: जी,
4: 1918 में बापूजी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो, और दक्षिण जिसको हम पहले बोलते थे अहिंदी प्रदेश, आज भी कई लोग बोलते हैं
5: जी, जी,
4: लेकिन
5: जी।
4: मेरा हमेशा विरोध रहता है कि अहिंदी नहीं, अहिंदी का मतलब होता है हिंदी जहां ना हो, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब हम यदि कहें हिंदी तर प्रदेश तो ये संबोधन ज्यादा अच्छा है।
5: अच्छा।
4: तो आप देखिए कि जो 1918 मैंने, आप देखिए अभी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा शतमानोत्सव ना, शताब्दी वर्ष, 100 वर्ष होने जा रहे हैं 18 में
5: जी, जी,
4: तो शताब्दी वर्ष मनाने जा रही है, उसी में 1964 में इसको दर्जा दिया गया था नेशनल इम्पोर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस,
5: राष्ट्रीय महत्व की संस्था,
4: जिसमें उच्च शिक्षा शोध संस्थान की स्थापना हुई
5: जी।
4: और इसको बोलते हैं पीजी विभाग बोलिए, उच्च शिक्षा शोध संस्थान बोलिए, स्नातकोत्तर विभाग बोलिए, जिस नाम से आप बोलना चाहें, और वहां पर रेगुलर एमए, एमफिल, पीएचडी और डीलिट जो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में नहीं है वो पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। और तब से लेकर के मैंने 1964, मैंने अभी हमने स्वर्ण जयंती मनाई है 50 वर्ष, आपको मालूम है आप आए थे सेमिनार में
5: जी।
4: तो 50 वर्षों में उच्च शिक्षा शोध संस्थान जो कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कैंपस में है
5: जी,
4: उनके अंतर्गत है काम कर रहा है, बहुत ज्यादा
5: जी,
4: उसने हिंदी की प्रगति की है
5: जी बिल्कुल।
4: और यदि आप मद्रास महानगर को छोड़ दें, पूरे हम भारतवर्ष की बात करें, तो केवल कॉलेजों में नहीं, विश्वविद्यालयों में, बैंकों में
5: जी,
4: जितने भी सरकारी उपक्रम हैं या गैर सरकारी उपक्रम है, यहाँ तक कि अब जो आईटी कंपनीज आ रही हैं वहाँ भी हिंदी बोलने वालों के, यदि आप हिंदी, अच्छी हिंदी जानते हैं
5: जी,
4: और अंग्रेजी जानते हो या हिंदी के साथ तमिल जानते हो
5: जी,
4: तो फ्रंट जो गेट फ्रंट आपके डेस्क होते हैं
5: जी,
4: उसके लिए वो मांग करते हैं
5: क्योंकि वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर अच्छी पकड़ रखेंगे।
4: तो ये हिंदी की स्थिति अब बदल रही है और आपको जैसा मालूम है कि 2007 में मैं आठवां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था
5: जी,
4: मैं गई थी और वहाँ पर जो मैंने
5: न्यूयॉर्क में जी
4: जी, वहाँ पर जो मैंने हिंदी की स्थिति देखी, कहते हैं कि 60 से ऊपर विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है।
5: अमेरिका
4: यूएसए
5: वाह।
4: तो और जो डेलीगेट्स वहाँ जुटे थे, करीब करीब 1500 के आसपास डेलीगेट्स थे, जो केवल उधर की तरफ से, मैंने पूरे यूएसए, जापान, रूस, चीन सब जगह से आए थे, और मतलब हिंदी बोलने वाले विद्वानों का जमघट था वो। तब पहली बार मैंने अनुभव किया कि हिंदी
5: का कुंभ,
4: हाँ, कि हिंदी केवल हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, हिंदी पूरे विश्व की भाषा है और तीसरे नंबर पर आती है
5: जी, विश्व की तीसरी
4: भाषा है वो। तो अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं
5: जी,
4: हम लोग कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो दुनिया मुट्ठी में कैसे होगी। अभी आप मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं
5: जी, जी,
4: गए थे वो, तो उन्होंने कितना बढ़िया भाषण दिया, युवा पीढ़ी को कितना उन्होंने अप्रिशिएट किया इसके लिए। तो वो जहाँ जरूर, अब क्या वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं या कई भाषाएं नहीं जानते हैं, लेकिन वो हिंदी में बात करते हैं
5: जी,
4: मैंने वो हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं
5: जी।
4: जब चीन, जापान, ये लोग अपनी मातृभाषा में इतना विकास कर सकते हैं, वो लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो हम भारतवासी को क्यों शर्म आनी चाहिए। कई लोगों को बड़ी शर्म आती है हिंदी पढ़ना, गर्व से बोलो हम हिंदी पढ़ रहे हैं,
5: और क्योंकि यह हिंद को एक सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी जरूरी
4: जरूर है। अब हम यहाँ आए तमिलनाडु में, तो क्या हमने तमिल नहीं सीखी?
5: जी बिल्कुल सीखी,
4: क्योंकि यहाँ यदि हमें रहना है, अपना काम चलाना है, यहाँ का कल्चर जानना है, यदि हम शोध के क्षेत्र से जुड़े हैं, शोध करवाना है, तो हमने तमिल सीखी
5: जी बिल्कुल।
4: मेरी शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई है, वहाँ पर हम जब पढ़ते थे तो हमारी पीयूसी में बंगला होती थी, हम, मेरी बहन बैठी है, हम लोग बहुत अच्छी बंगला बोलते थे। अब वो बात अलग है, टच छूट जाता है
5: जी,
4: तो कई चीजें हम भूल जाते हैं। पंजाबी हम बहुत अच्छी जानते हैं, एक साल मैं कच्छ में रही, गुजरात में, बहुत अच्छी गुजराती मैं जानती हूँ। तो ये हमारे लिए, हम विद्वान हैं ऐसा नहीं है, जब हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ जाते हैं तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाते हैं और हम शोध करवाते हैं
5: जी,
4: तुलनात्मक शोध में ये चीजें हमारे काम आती हैं। तो हम तो इसको, इसका जो पूरा योगदान है वो हिंदी को देना चाहेंगे कि हिंदी की वजह से, हिंदी से हम जुड़े, वो हमारे रोजगार का साधन बनी, उसकी वजह से हम इतना कर पा रहे हैं। तो जो उच्च शिक्षा शोध संस्थान है वो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के सहयोग से, उसके अंतर्गत रहते हुए हिंदी का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर रहा है।
5: बहुत
4: उसका दूरस्थ शिक्षा केंद्र है
5: जी जी जी,
4: जहाँ पर की एमए, बीए, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ये पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं
5: जी, जी, जी।
4: और बड़ी संख्या में विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं। पहले वहाँ पीएचडी और एमफिल भी था, लेकिन चूंकि अब यूजीसी के नियम के अनुसार वो बंद हो गया है, तो उसे बंद कर दिया गया है
5: जी, जी।
4: और बहुत सारे केंद्रों पर, जैसे जिंद है, हरियाणा है, करनाल है, पटना है, सब जगह पर हमारे सभा के केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर बच्चे,
5: उत्तर भारत में भी,
4: हाँ, बनारस में है, पटना में है, जिंद है, करनाल है, हरियाणा है, यहाँ पर बच्चे एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं। और जो हमारा धारवाड़ केंद्र है, हमने केवल अपने से पटना को जोड़ा है कि वहाँ वो यदि पीएचडी का एडमिशन करते हैं तो हम यहाँ से शोध निर्देशक तय करेंगे
5: जी, जी,
4: ऐसे धारवाड़ से बाकी केंद्र जुड़े हुए हैं
5: जी, जी,
4: एडमिशन यहाँ होगा, फिर जो वहाँ के विभागाध्यक्ष होंगे वो पूरी सूची हमारे पास, कुल सचिव के पास भेजते हैं, और फिर जो शोध निर्देशक होंगे
5: जी,
4: उनका पूरा बायोडाटा मंगा करके कि वो शोध के लायक हैं कि नहीं, यदि पीएचडी करवा रहे हैं तो पीएचडी हैं कि नहीं
5: जी,
4: डीलिट करवाना, जैसे इस बार 13 विद्यार्थी डीलिट किया है, तो ये सभा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए गर्व की बात है,
5: गर्व की
4: कि इतने बड़े बड़े लोग, बैंकों के अधिकारी पीएचडी कर रहे हैं। हमारे पास अभी जो है वो आईओबी के हैं, रिजर्व बैंक के जो अधिकारी हैं वो हमारे पास पीएचडी कर रहे हैं, तो ये सभा के लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े बड़े लोग सभा से हिंदी के माध्यम से।
5: मैम, अभी आपने कहा उच्च शिक्षा और शोध संस्थान के तहत आप अनुवाद का भी पाठ्यक्रम चलाते हैं, तो क्या पत्रकारिता का भी कोई पाठ्यक्रम है?
4: है, दोनों हैं, ये सेल्फ फाइनेंस में है, सेल्फ फाइनेंस में है, और ये पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, स्नातकोत्तर अनुवाद डिप्लोमा, स्नातकोत्तर पत्रकारिता डिप्लोमा,
5: पत्रकारिता, उसके लिए क्या योग्यता उसमें जो
4: बीए या आपने बीए बीएससी बीकॉम जो भी किया हो,
5: चाहे वहाँ कोई पर आपका भी विषय लेकर
4: हिंदी होना, हिंदी होना है।
5: जरूरी नहीं है कि आपका जो स्नातक स्तर पर जो पढ़ाई हुई हो उसमें पत्रकारिता एक विषय हो,
4: नहीं ये कोई जरूरी
5: हिंदी होना आवश्यक,
4: हिंदी होना अनिवार्य है।
5: अनिवार्य।
4: और अब तो चूंकि पाठ्यक्रम भी बदल रहे हैं, जो डिग्री लेवल है वहाँ पर भी पत्रकारिता और अनुवाद थोड़े स्तर पर कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में रखे जा रहे हैं, लेकिन उसे हम नहीं गिनते हैं। डिग्री होना है और वहाँ पर हिंदी होना है। जैसे अनुवाद के लिए हम कहते हैं कि हिंदी हो और अंग्रेजी की अच्छी बच्चे को नॉलेज हो, चूंकि हम दक्षिण में हैं तो अंग्रेजी तो बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन चूंकि हम हिंदी संस्था से जुड़े हुए हैं और ये हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम है तो हिंदी होना अनिवार्य है डिग्री दोनों पाठ्यक्रम के लिए। और इसकी बड़ी मांग है, यहाँ तक कि राजस्थान पत्रिका जो यहाँ का फेमस न्यूज़पेपर है
5: जी, पूरे देश का नंबर
4: वहाँ और क्या जी, तो वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ से अब कोई एमए कर रहा है पार्ट टाइम
5: जी,
4: और कोई फुल टाइम जो वहाँ पार्ट टाइम नौकरी करते हैं वो फुल टाइम कर रहे हैं दौड़ते। देखिए इतनी रुचि है बच्चों में। और हम मैं एक बात और यहाँ बता दूं कि मैं जो लोग सच में पढ़ना चाहते हैं कुछ जानना चाहते हैं मैं जरूर उनको नियमों में ढील देती हूँ। क्योंकि कोई औरत है मान लीजिए वो शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, बच्चों को पालने में उसका समय लिया, अब वो 50 साल की उम्र में यदि पढ़ने आ रही है और वो चाहती है कि वो रेगुलर करे
5: जी, ठीक।
4: या
5: जी,
4: कोई ऐसी लेडी जो जिसका बच्चा छोटा हो या जो प्रेग्नेंट हो जो नहीं आ पा रही हो, तो उसको मैं
5: उस समय स्वविवेक से निर्णय लेना
4: पड़ता है और उनको हम छूट देते हैं। प्राध्यापक भी सब तरह से उनकी सहायता करते हैं
5: जी।
4: तो ये कि ये सभा के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें प्राध्यापक भी बहुत अच्छे मिले सभी जो हमारे प्राध्यापक हैं बड़ी, मतलब एक तरह से आप कहो कि एक मुट्ठी की तरह सब लोग कार्य करते हैं। और जो बच्चे भी सच में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए किताबें नोट्स यहाँ तक कि शुल्क भी फीस भी हम उनके लिए देते हैं,
5: ये तो
4: उनकी फीस भी भरते हैं। यदि वो हमें वापस लौट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लौट आते हैं तो भी हम मांगते नहीं।
5: वाह, दया धर्म को मिले।
4: मैंने ये लगता है कि जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई चीज आड़े ना आए,
5: आड़े
4: कि हम पैसे नहीं भर पाए तो हम नहीं ये परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है आप परीक्षा दो, नियम है वहाँ छूट नहीं देंगे कि आपको फीस भरना है, मैंने भरना है, आप हमसे लेके भर दो, हमें भरने दे। डॉक्टर नजीम बेगम है, डॉक्टर सविता है, संतोषी है, मैं हूँ, ये हम लोग करते रहते हैं। और हम ये किसी को बोलते बताते नहीं है क्योंकि ये हमारा काम है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं। आज यहाँ है तो बोल रही हूँ इसलिए कि हिंदी को हम बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं और खास करके जो महिला है, हम लोग बहुत वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, नारी सशक्तिकरण की
5: जी, जी।
4: तो सशक्त कैसे होगी यदि हर चीज में आप नियम बताओगे, कानून बताओगे, रोड़े अटकाओगे, तो थोड़ी उसमें ढील दो, थोड़ा विवेक से निर्णय, जो नियम बनाते हैं वो इंसान के लिए नहीं बने, नियम जो बनाए जाते हैं
5: जी, जी,
4: वो ठीक से आदमी काम करे उसके लिए बनते हैं, लेकिन यदि नियम में ढील लेकर के हम किसी का फायदा कर सकते हैं जरूर।
5: जो सदियों से दबा ढका कर रखी गई है, अगर
4: सब
5: वो आगे बढ़ना
4: सबको पढ़ना, यदि आदमी कोई पढ़ना चाहता है तो हम क्यों रोड़े अटकाएं
5: जी,
4: उनको थोड़ा हम सपोर्ट कर दें। मॉरल सपोर्ट सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी भी आते हैं, औरतें आती हैं 50-55 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, अभी एक जर्नलिज्म में हमारे यहाँ करने आई थी पद्मा, वो काफी एज है उनकी, मैंने रिटायर हो गई है के बाद जर्नलिज्म करने आए, मैडम मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैडम क्यों नहीं कर पाओगे, मैं सब पढ़ सकती हूँ क्या, क्यों नहीं पढ़ सकते हो
5: जी,
4: इतना बोलना ही काफी होता है। और फिर देखिए उन्होंने मधुरा कामराज से एमफिल पूरा नहीं किया था, मैंने बोला पूरा करो आप कर सकते हो, उन्होंने मधुरा कामराज वाला जो छूट दिया था वो अपने गाइड से मिलकर उन्होंने एमफिल पूरा किया और बोले मैं करती हूँ, आप मुझे पीएचडी में एडमिशन देंगे क्या, हाँ देंगे। और सबसे पहला एडमिशन मैंने उनके पीएचडी में फॉर्म भरवा के दिया, पीएचडी कर रही हूँ, उम्र उनकी होगी 65 साल के आसपास, क्यों नहीं, जो पढ़ना चाहते हैं बहुत खुशी से पढ़े।
5: ये तो बहुत अच्छी बात बताई, ये बहुत प्रेरणादायक होगा, हमारी छात्राएं यहाँ बैठी हैं, इनको लगता है कि हिंदी से अगर हम आगे की पढ़ाई करें, उच्च शिक्षा में जाएं, तो रोजगार या हमारे भविष्य की क्या संभावना होगी।
4: बहुत संभावनाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये है कि एक दिन में कोई चीज नहीं मिलती। आवाज की जो युवा पीढ़ी है, यूथ आज का, वो सोचता है कि हम एक दिन में सब चीज हमें हासिल हो जाए। बेटा हम लोगों को नॉलेज है, हम भी हैं, आपकी मैडम भी हैं, हमको नौकरी करते हुए 29 साल हो गए, मैडम को भी कहीं ना कहीं इधर उधर करते हुए कम से कम
5: 22 साल
4: हो गए। इनकी और मेरी मुलाकात अग्रवाल विद्यालय में हुई थी, तब ये छोटी सी जोड़ा लगाए हुए, छोटी सी पतली दुबली एकदम प्राध्यापिका थी, तब की हमारी पहचान है। तो ये हम लोगों ने एक दिन में नहीं हासिल किया। आपकी मैडम बैठी है तो हमारी छात्रा ही रही है एक तरह से, केरल विश्वविद्यालय थी ये, केरला में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की छात्रा हैं और आप जानते हैं ब्रिलियंट हैं, अच्छी हैं, तभी तो एमओपी में सुधा जी ने उनको लिया है ना, उनका सपोर्ट किया। तो क्या ऐसे लोगों को पा करके आपके वैष्णव कॉलेज को गर्व नहीं होगा, और ऐसे छात्र दे करके क्या दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को गर्व नहीं होगा? तो बहुत स्कोप है। आप देखिए हर दूसरे तीसरे दिन टीचरों की मांग होती है
5: जी,
4: चाहे कॉलेज के स्तर पर हो, चाहे स्कूल के स्तर पर हो
5: जी,
4: या जैसे मैंने बताया मल्टी नेशनल कंपनियां हैं वो हमेशा हर, अभी मेरे पास एक आया था यहाँ से स्टेशन के पास, वो कौन सा एरिया कहलाता है, वहां से कोई कंपनी है, बोले मैडम 15 लोग हमें चाहिए, कोई मल्टी नेशनल कंपनी है, उनको डिग्री हो, हिंदी अच्छी बात करें। वो नंबर भी मैंने कहीं सेव किया, चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी
5: जी, जी,
4: उनको ये है चाहिए तो पार्ट टाइम चाहिए तो फुल टाइम, उसके हिसाब से वो पेमेंट करेंगे और उनका जो भी काम होगा बताएंगे आपका
5: जी,
4: उस तरह से काम लेंगे वो। तो खाली ट्यूशन ही आप करें हिंदी की, तो देखिए ना गाँव हमारे कई स्टूडेंट केवल ट्यूशन करके हजारों हजार रुपए कमा रहे हैं
5: जी।
4: तो नौकरी की कोई कमी नहीं है, और जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके लिए मुद्रा की कभी कमी नहीं होती, मैंने तो ये महसूस।
5: और आजकल तो जबकि ये एक इस पर बहुत बहस जारी है कि क्या विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए या घर पर हो शिक्षा, बच्चों को अब स्कूल से दूर रखा जाए
4: ऑनलाइन,
5: हाँ तो उस तरह में तो ये और ज्यादा उपयोगी होगी,
4: उपयोगी है। लेकिन मैं सुधा जी बताऊँ एक बात कि मुझे आपने ये प्रश्न पूछा, मुझे एक आर्टिकल याद आ गया, मैंने पढ़ा था काफी साल पहले, 10-12 साल हो गए
5: जी,
4: कि एक बच्चा है जो कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है और कंप्यूटर उसको कहानी सुना रहा है, एक जमाना था जब स्कूल हुआ करते थे और वो जो लड़का बैठा हुआ है कंप्यूटर के आगे, कंप्यूटर से ऑनलाइन जो अब टीचिंग हो रही है
5: जी, जी,
4: जो
5: जी।
4: आज वो देखिए इमेजिनेशन जो हमने 12 साल पहले पढ़ा था हो रहा है,
5: हो रहा है,
4: लेकिन उससे क्या हो रहा है कि बहुत चीजें समाज में बदल रही है, एक अलग प्रकार की साइकोलॉजी आ रही है। तो उसमें बच्चा को कहानी सुनाता है, क्योंकि बच्चा जो बैठा हुआ है उसका सिर बड़ा सा है, कान बड़े बड़े हैं, मुंह छोटा सा है, चश्मा लगा हुआ है, उसकी बॉडी छोटी सी है, मैंने एक स्ट्रक्चर बताया है उसमें। तो आप देख रहे हैं कि अब जो बच्चे बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं, बहुत तर्क करते हैं, वो अलग प्रकार से डेवलप,
5: शारीरिक रूप से भी,
4: हाँ, क्योंकि बाहर खेलने नहीं जाना, कोई एक्सरसाइज नहीं है, दिन भर आप कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हो, दिन भर आप लैपटॉप लेके बैठे रहते हो, जो मोबाइल लेके बैठे रहते हो, वही दुनिया हो गई है। तो शारीरिक तो आपका कोई श्रम नहीं है, खेल कूद नहीं है, तो बॉडी क्या होगी, सिकुड़ती जाएगी।
5: और एक सामुदायिकता की भावना,
4: सोशल बिल्कुल नहीं है, वो क्षण क्षण गुस्सा करते हैं, क्षण क्षण आक्रोश में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, किसी से मिलते नहीं है, कोई चीज बांटते नहीं है, उनको बांटने ही नहीं मालूम है। भाई हम लोग थे जब अपने जमाने में, तो अपने क्या होता था, अपनी मम्मियों से सारी बात कह देते थे, है ना। अब बच्चे कहाँ कहते हैं, उल्टा मम्मी को डांट देंगे, चुप रहो तुमको क्या मालूम है। तो ये जमाना बदल रहा है, तो ठीक है बदलना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों में ये चीजें हैं। तो कहानी क्या सुनाता है, स्कूल में बच्चे भोजन लाते थे, अच्छा ऐसा भी था भोजन भी, क्योंकि जब बच्चा जिस जमाने में है 22वीं 23वीं सदी में आगे, उसमें खाना नहीं है, कैप्सूल खाता है वो स्कूल नहीं है तो वो इसके बारे में क्या जानेगा। हाँ कंप्यूटर पर ऑनलाइन पढ़ रहा है तो कैप्सूल खाता है, वही उसका भोजन है, ऑक्सीजन की नली लगी है, हो रहा है ना, आज आप देख रहे हो ना कि लोग वैसे तो हंसते नहीं है लेकिन पार्क में जाके लाफिंग थेरेपी करते हैं
5: जी।
4: भाई घर में अपने बच्चों से तो आप हंस के बात करते नहीं हो, उनको डांटते रहते हो, और जाके पार्क में वो महात्मा बुद्ध बन के, बुद्धा बन के आप हाथ उठा के लाफिंग थेरेपी कर रहे हो, तो क्या इसकी जरूरत है। रोजमर्रा की जिंदगी में सुधा जी बैठी है, पूछिए, हम कुल सचिव जरूर हैं लेकिन हम आज भी वहीं बैठ के वैसे ही हैं। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सबसे मिल लेती हैं, ये सबसे बात कर लेती हैं, कोई विद्यार्थी भी आता है तो इनके रूम में चला जाता है।
5: मेरा अगला सवाल भी यही था मैम आपसे कि आप इतने व्यस्त हैं ऐसे बड़े पद पर, जबकि सभी केंद्रों, सभी राज्यों में जो
4: हाँ, मेरे मेरे अंतर्गत अभी मैं कल अपनी बहन को बता रही थी
5: जी,
4: 11 बीएड सेंटर, 10 एचपीटी सेंटर, 7 पीजी सेंटर, ये सारे, और जो डिस्टेंस पूरे चल रहे हैं वो तो अलग केंद्र है ही है सारे, दक्षिण में, दक्षिण के अलावा दक्षिण में सब जगह है, त्रिची से लेकर के केरला से लेकर हर जगह, ऊटी सब जगह, उसके अलावा जिंद, हरियाणा जैसे मैंने नाम लिया
5: जी,
4: अनगिनत केंद्र है,
5: इतने केंद्रों
4: और सबके बॉस हैं, सब काम संभालते हैं, रोज आरटीआई पढ़ते हैं, रोज आरटीआई का जवाब देते हैं, रोज कोर्ट जाते हैं, कोर्ट का जवाब देते हैं, और रोज आर्टिकल लिखते हैं, रोज हम बोलते हैं, कविता लिखते हैं।
5: वही मैं पूछने वाली थी कि इन सब कामों के बीच से भी आप साहित्य के लिए कैसे समय
4: निकाल लेते हैं। अब जैसे आपके यहाँ जो सेमिनार था उसके लिए मैंने भी कुछ तैयारी कर ली, पढ़ लेती हूँ, पढ़ने की रुचि है, कई बार थोड़ा मन में ऐसा लगता है कि अब क्लास नहीं ले पाती हूँ, तो खैर कोई बात नहीं, चलिए।
5: क्या क्या लिखा, क्या क्या प्रकाशित करवाया?
4: मैंने अभी 3-4 आर्टिकल लिखे तुलनात्मक साहित्य पर, जैसे अभी बात हुई
5: जी, जी,
4: उस पर लिखा। फिर 3-4 आर्टिकल अलग अलग मैंने लिखे हैं और छपने के लिए भी लखनऊ गए, एक पत्रिका शोध पत्रिका निकलती है वहां से, और बाकी तो रखे हुए हैं। सुधा जी एक तो और बात बताऊं, अब कई जगह पर ऐसा हो गया लोग आर्टिकल मांग तो लेते हैं लेकिन वो पड़ा रहता है, छापते नहीं। अब मेरे करीब 175 आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं,
5: ठीक।
4: तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत लिख लिया, अब जो लोग छापते नहीं है तो क्यों भेजना, रखे रहो ना, देखा जाएगा बाद में। जैसे मेरी एक पुस्तक अभी आ गई है शोध पर पत्तों पर
5: जी,
4: जो आपको आपको दिया है बहुआयामी कोण, ये पूरी मेरे जो शोध आलेख है उसका पूरी पुस्तक है वो, और उन्होंने ये मांग करके निर्मल पब्लिकेशन दिल्ली, उन्होंने मांग करके
5: हमारी छात्राओं ने समीक्षा भी,
4: हाँ ये मालूम है, ये जो आपने सुना होगा सुलभ शौचालय,
5: जी जी जी,
4: नाम सुना होगा,
5: बिंदेश्वरी पाठक,
4: पाठक
5: जी,
4: उनकी तरफ से ये प्रपोजल आया था कि आप किताब भिजवाएं
5: जी।
4: तो मैंने उसको क्या किया था, हम सब पब्लिश थे वो अलग अलग मैगजीन में, तो उसका मैंने एक थीसिस जैसा बना लिया था बड़ा, तो उसी से जुड़े हुए बिंदेश्वरी पाठक से जुड़े हुए अशोक करके एक
5: जी,
4: तो उनसे खबर भेजी गई कि आप अपनी पुस्तक भिजवाएं, और उन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए उसके लिए छापने के लिए, और पैसा चेक मेरे पास आ गया था, तो निर्मल पब्लिकेशन व्यवस्था भी उन्होंने करी, वो उन्होंने छाप दिया, किताबें मेरे पास आ गई, और वो चेक जो मैंने मेरे नाम पर आया था उसका कैश उनके बैंक अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया, मतलब मुफ्त में हमारी किताब छपी। और हमें ये भी कहा गया कि आगे भी यदि आप कुछ छपवाना चाहते हो या आपके कोई पहचान के हो जो अच्छी किताब हो
5: जी जी,
4: तो उसको आप यदि सिफारिश करते हैं तो हम छापेंगे।
5: बहुत
4: तो ये बहुत अच्छी बात है,
5: ये प्रेरणा है इन बच्चियों के लिए जो कुछ लिखने में अपनी रुचि रखते।
2: वैसे तो आप उत्तर भारत से हैं, तो आप चेन्नई कैसे आए?
4: ऐसा है कि होता है ऐसा कि जब शादी के बाद जब पति जहाँ जाते हैं तो पत्नी भी चली जाती है, एक सामान्य सी स्थिति है। तो 1981 में 1981 में मेरी शादी हुई, तब मैं एमए फाइनल में थी, और जल्दी शादी हो गई थी, एमए फाइनल में थी, 21 साल की थी उस समय में जब मेरी शादी हुई है, तब ये सारे सब लोग बहुत छोटे छोटे थे, ये मुझसे 2.5 साल छोटी है मेरी बहन, और मेरी जो सबसे छोटी बहन है ममता वो 6th क्लास में पढ़ती थी जब मेरी शादी शादी हो गई। और शादी के बाद इंदौर में शादी हुई मेरी, और मैं चली गई भुज कच्छ, उस समय वहाँ जो आर्मी का पूरा स्टेशन है वो हस्बैंड की देखरेख में बन रहा था, वहाँ एक साल मैं रही, और 82 में मैंने BHU से PhD ज्वाइन किया और मद्रास आ गई।
2: तो मद्रास
4: आने के बाद मैंने PhD कम्प्लीट की, और सभा के मैं सभा से कैसे परिचय हुआ, मुझे ये बताया गया कि टी नगर में एक दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है, तो मैं PhD के लिए किताबें लेने आती थी
5: जी,
4: बुक्स, रेफरेंस बुक रिसर्च के लिए,
5: क्योंकि सभा से जुड़ गई है भी, बहुत
4: काले है और बढ़िया बहुत अच्छी किताबें थी, आज भी हैं, मैंने 2-2 रुपए की किताबें जो बड़ी अमूल्य है अब मिलती नहीं है, तो मैं लेती थी और रिसर्च करती थी। और उसी समय सभा में एक बनारस के हमारे जो हमको गुरुजी ने पढ़ाया उनके बेटे यहाँ थे जय प्रताप मल, तो जब ऐसे कुछ पोस्ट खाली हुई तो वो हमारे हेड को डॉक्टर रामा नायडू जी को लेके मेरे यहाँ आए, उस समय मैं मेरे PhD करे हुए अवार्ड हुए 6-8 महीने हुए थे, और मतलब मैं बता रही हूँ हमको अवार्ड हुई है वही 85-86 के बीच में, और ये 86 की बात है, मेरी बिटिया 2 साल की थी, 18 सितंबर, वो मुझे डेट भी याद है, 16 को उसका बर्थडे था, 2 साल की हुई थी, 18 सितंबर को दोनों लोग हमारे घर आए कि कोई टीचर रिटायर हुआ है उसकी जगह पार्ट टाइम। और मैं आपको ये मैंने स्थिति बता दूं कि मैं जाने को तैयार नहीं थी, शुरू से मेरा ये था कि मैं अपना एक स्कूल खोलेंगे जहाँ भी रहेंगे उसमें मैं अपना पढ़ाऊंगी और अपना प्रिंसिपल बनूंगी, उस तरह का कुछ दिमाग उस समय था, तो मैं किसी की नौकरी करने नहीं जाऊंगी ऐसा। लेकिन फिर पति ने समझाया कि नहीं, मद्रास महानगर में है, कितने दिन यहाँ रहेंगे, मान लो यहाँ से कहीं और जाना पड़े या यहीं हम सेटल हों, तो जब इतने बड़े शहर में रहते हैं और तुम अपने पाँव पर खड़ी हो जाती हो, उन्होंने एक बात कह दी कि कल को मुझे कुछ हो गया तब,
5: अरे
4: तो मुझे थोड़ी बात पिंच हो गई और मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी, और तब 2 घंटे के लिए पढ़ाने जाती थी
5: पार्ट टाइम।
4: तब से मेरी नौकरी शुरू हुई 86 से, 18 सितंबर 86 से पार्ट टाइम पढ़ाती रही। उसी समय फिर बेटा होने को हो गया, तो बीच में थोड़ा छोड़ा, रविंद्रनाथ सिंह जो भी वहाँ है वो आ गए थे बीच में, क्योंकि हमको ऑफर दिया गया कि आप इसको कंटिन्यू करिए, लेकिन मेरा सीजेरियन
5: MCC महाविद्यालय,
4: तो मेरा सीजेरियन बेबी था सेकंड भी, तो मैं नहीं आ सकती थी, और मैंने वो इंटरव्यू में चाहती तो झूठ बोल देती कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि मैं सीजेरियन बेबी है, मैं नहीं आ सकती, 3-4 महीना तो नहीं आ सकती हूँ। तो उसके बाद फिर अरविंद सिंह जी आ गए, थोड़े दिन वो रहे, फिर वो चले गए। फिर मुझे उसमें देखिए, ये ऐसा होता है कि जिसके भाग्य का जो लिखा होता है, तब हमारे बच्चे जो आजकल रेलवे में श्रीनिवासन और ये बहुत सारे बच्चे वैजयंती जो अब नहीं रही, ये लोग बच्चे जो हैं प्रीवियस और फाइनल के जो बच्चे थे जिनको मैंने पढ़ाया था टेम्परेरी, उन्होंने शैली विज्ञान एक नया पेपर शुरू हुआ था, तो बीच में एक कोई केरला से लेडी भी आई थी,
6: शैली विज्ञान मुझे पता है,
4: हाँ, तो एक केरला से कोई लेडी आई थी, उनसे बच्चों ने नहीं पढ़ना चाहा और उन्होंने नायडू जी को ये बोला कि हमको वही मैडम चाहिए, मेरे को बुलवाया। तो मेरे को फिर मुझे याद है, अभिषेक मेरा बेटा 5 महीने का था और हमारे जो हेड हैं डॉक्टर नायडू, अब तो नहीं रहे वो, रात को 10:30 बजे पानी बरस रहा था फरवरी महीने में, वो भीगते हुए हमारे घर आए थे, अब भी मुझे वो याद है,
5: प्रतिभा की कदर है।
4: हाँ, भीगते हुए आए और अंदर बुलाया मैंने, हमने कहा सर इतनी रात में आप आ रहे हो, तो रास्ता भटक गए थे, निकले तो होंगे घर से, टीनगर में रहते थे, हम गिल नगर में थे। बैठाया फिर मैंने कहा क्यों इतनी देर, तब उस समय फोन का ज्यादा कुछ था नहीं, तो बोले कि वो रविन्द्रनाथ सिंह चले गए हैं, एक केरल से कोई लेडी आई, बच्चे उनसे पढ़ने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं उन्हीं मैडम को बुला के लाओ, इसलिए मैं आया हूँ और आप कल से आ जाइए। अभिषेक 5 महीने का सोचो, और बोले जो आप कहेंगी मैं वो मानूंगा। तो फिर मैंने वही 11 से 1 मैंने मांगा और उसमें 4-5 महीना फरवरी से मई तक पढ़ाया, मई में इंटरव्यू हुआ सिलेक्शन हो गया, तब से परमानेंट हो गए। और कहते हैं ना कि रोजी में रोजी रोटी जहाँ जिसकी लिखी होती है ना,
5: भागी में।
4: और उस समय उसके बाद अनेक कॉलेजों में नौकरियां निकली, कमला जी मेरे बाद स्टेला में गई हैं, बहुत सारी नौकरियां निकली, मैं चाहती तो कहीं भी पैसे के लिए जा सकती थी, वहाँ पैसा कम था लेकिन नौकरी का एक बोलते है ना चार्म था, पीजी पढ़ा रहे हैं, बड़े बच्चे हैं, रिसर्च करवा रहे हैं, तो एक जो चार्म होता है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत था।
5: जी, जी।
4: पैसा कम है तो क्या है, तो पैसा कमाने के लिए तो हम कहाँ निकल गए होते।
5: कविताएं आपने कब लिखना शुरू की, ज्वाइन करने के बाद या पहले से लिखते?
4: देखिए सुधा जी, मैं कविताएं लिखती थी जब मैं बीएससी कर रही थी, मैं बीएससी हूँ, तो हमारे यहाँ बीएचयू में 3 मेन सब्जेक्ट होते थे जब हम पढ़ते थे, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, पहले फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और हिंदी
5: जी
4: जरूरी है
5: जी।
4: सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर फिजिक्स हट जाती है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री।
5: अच्छा,
4: ठीक। मेरा पहला नॉवेल बीएससी में जब थी तब मैंने पब्लिश करवाया, और मैं
5: युवा
4: बदनसीब, साक्षी बैठी है उधर, और कविताएं मैं लिखती थी, बनारस में अभी भी आता है युववाणी कार्यक्रम, उसमें मैं कार्यक्रम देती थी कविता का और कहानियों का कार्यक्रम। मेरी पहली कहानी थी एक, मैंने साइंस पर लिखी थी, जो यूरेनियम की जो खोज हुई थी मैडम क्यूरी,
5: जी जी जी,
4: उन पर एक कहानी मैंने लिखी थी अपने पापा के सहयोग से, पापा मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर थे उस समय वहाँ, तो मैंने पहली कहानी उनके सहयोग से लिख करके, बड़ी लंबी कहानी थी, करीब 1/2-1.5 घंटा की कहानी, वो मैंने युवाणी कार्यक्रम में दिया था, और लगातार कार्यक्रम देते थे। फिर शादी हुई तो भुज चले गए, भुज में कार्यक्रम देती थी मैं रेडियो पर, कहानियां, छोटी छोटी कहानियां और कविताएं, तो ये लेखन उस समय से ही शुरू हो गया था, शायद इसीलिए बीएससी छोड़ करके मैंने एमए किया,
5: जो अनवरत जारी है। तो हमें एक कोई कविता सुनाएं।
4: ये क्या अनेक कविता मेरे हाथ में है, आप क्या सुनना चाहेंगे, मैं तो ले आई हूँ पढ़ने, जल्दी जल्दी मिले वो ले आई हूँ
5: आपकी। सब
4: देखो, पहली एक हमारी तो सभी कविताएं, भाई ऐसा होता ना कि एक माँ के लिए सारे बच्चे बड़े प्रिय होते हैं, है ना, उसमें अंतर नहीं कर सकते, और हम लोग कहते हैं ऐसे होते हैं मुट्ठी की तरह, अब हम भले ये मुट्ठी है, हमको लगता है कि अरे ये नहीं हो तो भी हम काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे एक भी उंगली ना हो तो हमको उसकी कमी लगती है
5: जी।
4: तो ऐसे ही हमारी सारी संतान एक जैसी होती है, हमारी एक सभी कविताएं हमें प्रिय होती है क्योंकि हम उसको लिखते हैं, है ना, उनको जन्म देते हैं
5: जी, बिल्कुल।
4: तो मैं सुना रही हूँ अभी, देखो आजकल हम लोग एसी में बैठ जाते हैं और आईटी कंपनी का भी वही हाल है, सुबह बच्चे निकल गए 7 बजे, धूप कहाँ रहती है, रात को जब आते हैं 8 बजे धूप कहाँ रहती है,
6: विटामिन डी,
4: एसी विटामिन डी की कमी हो रही ना, इंजेक्शन लगा रहे हैं आज बच्चे, हाँ, उसी पर मैंने एक कविता लिखी है, धूप कहाँ,
5: धूप कहाँ,
4: झरोखों से खेलती आंगन में उतरती अटखेलियां करती पीली तांबई सोने से धूप कहाँ खो गई है,
5: कहाँ खो गई है,
4: झरोखों से खेलती आंगन में उतरती अटखेलियां करती पीली तांबई सोने सी धूप कहाँ खो गई है, नहीं झांकती झरोखों से, अब झरोखे ही नहीं है,
5: झरोखों का अर्थ नहीं पता है,
4: झरोखों का अर्थ ही नहीं पता है कि जो पुराने घर हुआ करते थे ऊपर की तरफ होल बनाए जाते थे, जिससे कि हवा आती थी
5: जी।
4: और साथ में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उनसे जब धूप की रेज आती थी
5: सीधी लकीर
4: तो उसको हम लोग छन्नी से ऐसे ऐसे देखा करते थे, डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते थे गोल्डन कलर के। वो अब ब्यूटी कहाँ बच्चे जानते हैं, बच्चे कुछ जानते ही नहीं, ना वर्षा जानते हैं, ना वर्षा में भीगना नहीं जानते हैं, छतरी ले लेते हैं भीगते ही नहीं है। भीगो वर्षा में उसका आनंद लो, धूप में चलो उसका आनंद लो, सुबह जाओ हवा चलती है, उसी पर ये करता है
5: जी।
4: तो कहते हैं नहीं झांकती वह झरोखों से, नहीं झूलती खम्भों से,
5: नहीं झूलती खम्भों,
4: करती नहीं लुका छिपी पेड़ों की डालियों से, छन छन के धूप आती है। कहाँ तैरती है तालाब की लहरों में, आप तालाब के किनारे जाइए, बच्चे कहाँ जाते हैं तालाब जानते ही नहीं है। हम लोग तालाब में कूद कूद के नहाते थे,
6: सारे सूख गए।
4: हाँ,
5: ये स्विमिंग पूल जाते हैं।
4: हम लोग तालाब में कूद कूद के नहाते थे, वही मिट्टी लगाते थे शरीर पर जब छोटे छोटे थे, हम लोग गाँव के लोग हैं तो लगाते थे, तो वही है। कहाँ तैरती है तालाब की लहरों में, कहाँ भरती है उष्मा तन मन में, अब तो बस धूप सपना बन जाएगी, अब तो धूप सपना बन जाएगी। अंतिम देखिए, शहरों की अट्टालिकाएं खा जाएंगी धूप को, हो रहा है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, शहरों की अट्टालिकाएं खा जाएंगी धूप को, निगल जाएंगी ऊष्मा, अब कहाँ है झरोखों से झांकती सुरमई धूप का एक टुकड़ा, सुरमई माने गोल्डन, सुरमई धूप का एक टुकड़ा।
7: बहुत बढ़िया, और कविता सुनाइए,
4: और कुछ पूछ लो उसके बाद कविता सुनाती हूँ, कुछ और जानना चाहते हो, बच्चे लोग कुछ जानना चाहते हैं।
6: मैम, न्यूज़पेपर्स जो हैं वो बहुत कम, हिंदी के बहुत कम है, इंग्लिश के हर कोई ले लेता है, पर हिंदी के इतने सारे न्यूज़पेपर्स नहीं है, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या करना चाहिए कि हिंदी की ये जो न्यूज़पेपर्स अखबार पढ़ने की आदत बढ़ जाए।
4: नहीं, ऐसा होता है, आप ऑनलाइन जाइए ना, देखिए ऑनलाइन,
6: मैम ऑनलाइन तो सब है
4: आजकल, तो देखो इतनी सुविधा हो गई है कि आप अपना मोबाइल पर भी सारे हिंदी के न्यूज़पेपर देख सकते हैं, और हिंदी के न्यूज़पेपर कम नहीं है, हम चूंकि दक्षिण में हैं इसलिए दक्षिण में हमको कम देखने को मिलती है। हाँ, क्योंकि यहाँ का उनकी मातृभाषा का तमिल पेपर होगा, दिनय तंदी है, दिनय मलर है, ये सारे पेपर हैं, और बहुत सारे लोग जो हिंदी नहीं जानते हैं या तमिल भी नहीं, जो नई पीढ़ी आ रही है वो तमिल भी नहीं जानती, तो वो इंग्लिश से काम चलाते हैं, तो इस कारण यहाँ नहीं। यदि आप उत्तर भारत की तरफ जाएं, पंजाब जाएं, उधर जाएंगे तो उनके जो अपने मातृभाषा, जैसे पंजाब जाएंगे तो पंजाबी भी होगा लेकिन साथ में हिंदी के भी। अब जैसे हमारे यहाँ लाइब्रेरी है तो हमारी नेशनल लाइब्रेरी में सारे न्यूज, दैनिक जागरण है, जितने भी न्यूज पेपर है हमारी लाइब्रेरी में हम मंगवाते हैं, तो यदि आपको न्यूज पेपर पढ़ना हो तो लाइब्रेरी में आके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें कि वीकली भी आते हैं और 15 दिन वाले भी आते हैं, फोर्टनाइट वाले, फिर मंथली भी हैं, तो अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर हैं, डेली न्यूज़पेपर, तो राजस्थान पत्रिका यहाँ सबसे ज्यादा फेमस है और अच्छा अच्छा पत्र माना जाता है।
7: वैसे तो हिंदी प्रचार सभा में अनुवाद डिप्लोमा तो आप कराती हैं, तो आजकल के जमाने में तो हिंदी को रोजमर्रा जिंदगी में वैसे बहुत इतना भी नहीं हो पा रहा है कि मतलब उसको एक करियर बना ले, मतलब उससे हमें कोई जॉब मिले, तो सभा से जो अनुवाद डिप्लोमा आप कराते हैं तो उससे कोई फायदा?
4: जरूर फायदा है, आप देखिए यदि फायदा नहीं होता तो आज मैं बता दूं, सदर्न रेलवे का नाम सुना है आप, जानते हैं दक्षिण रेलवे, वहाँ का जितना भी मैंने कम से कम 15 विद्यार्थी
7: अनुवादकों की
4: अनुवादक हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर चुके हैं, वहीं से एमए किया। हाँ, तो उससे फायदा होता है, यदि आप एमए कर रहे हैं तो अब ये होता है कि हिंदी अनुवादक के लिए एमए का काफी होता है, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में कहते हैं यदि आपने एमए किया हो, डिप्लोमा कर भी रहे हो तो भी नौकरी लग रही है। दक्षिण रेलवे, इंडियन एयरलाइंस, करीब 12-13 बच्चे इंडियन एयरलाइंस के सभा के, जो अलग अलग पदों में बैठे हुए हैं, कोई हिंदी अधिकारी है, कोई हिंदी ट्रांसलेटर है, कोई हिंदी टाइपिस्ट है, और खाली वही काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे काम भी उसके साथ वो कर रहे हैं, लेकिन सभा को छोड़ना नहीं चाहते, मतलब सभा जितने भी पाठ्यक्रम चलाती है, जितने भी कोर्सेज चलाती है, जैसे हमने बीच में कहा था कि जो आजकल टाइपिंग सबसे बड़ा बिजनेस हो गया है, आप कह सकते हैं कि मद्रास में एक पेज का 35-40 रुपए तक लोग टाइपिंग का लेते हैं, और हमारे यहाँ तो अथाह भंडार है रिसर्च का, प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे पीजी डिप्लोमा है तो उसका 100 पेज का प्रोजेक्ट है, जो जर्नलिज्म है उसके 100 पेज के प्रोजेक्ट हैं, तो हम तो अपने बच्चों को बोलते हैं खुद टाइप करो, तो उसके लिए हमने सोचा था 3 मंथ्स सर्टिफिकेट कोर्स, लेकिन तब मैं उसमें प्रोफेसर अध्यक्ष थी तो मैंने प्रपोजल रखा था कुलसचिव के सामने, तो उन्होंने कहा चलाएंगे, फिर नहीं चला पाए, खैर वो अलग बात है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, तो मैं अब सोच रही हूँ कि 3 मंथ्स सर्टिफिकेट कंप्यूटर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कि मतलब बच्चा इतना सीख जाए कि वो खुद अपनी थीसिस टाइप कर ले, क्योंकि यदि एक 400 पेज की थीसिस होती है पीएचडी की, 350 पेज की होती है, जितनी भी होती है, तो आराम से 12-15 हजार का खर्चा उसको आता है, तो वो काम भी ले सकता है। जैसे हमारे कई बच्चे हम काम दे रहे हैं तो लेते हैं, हम बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग जिनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है, उनको हम ये बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और तुम आओ जाओ, पैसे लेन देन खुद करो, बीच में हम नहीं आते। तो वो क्या होता है, उनका टाइपिंग अच्छा होता है, बच्चा भी कुछ सीखता है, सेटिंग अपनी सेटिंग करवाता है, जो टाइपिस्ट होता है उसको पैसे मिलते हैं। एमफिल बच्चे हैं, मैंने इतना रिसर्च का काम है और प्रोजेक्ट का काम है कि साल भर टाइप करना यदि जानता है बच्चा, तो आराम से एक साल के अंदर अंदर टाइप ये हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप प्रिंटर सारा चीज खरीद लेता है और आराम से कमाई है घर बैठे। उसके अलावा आप पत्रकार बन सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि राजस्थान पत्रिका के 3-4 लोग, अब जैसे मेरे अंडर में ही एक विजय राघव है, वो अभी एमफिल कर रहा है, तो देखिए कितना कितना दौड़ भाग पार्ट टाइम कर रहा है, दौड़ भाग करके जाता है, 2 घंटे का टाइम निकालता है, क्लास करने आ जाता है। तो ऐसे बच्चों को हम क्यों ना सपोर्ट करें, जो अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं, रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, उसको लगता है पीएचडी कर लूंगा तो वो छोड़ करके कहीं और अच्छी टीचिंग लाइन में चला जाऊंगा, तो ऐसे लोगों को क्यों ना सपोर्ट करें। तो हिंदी पढ़ करके अब बहुत ज्यादा नौकरी रोजगार पर, जिसको आप कहते हो, एक एक आप विज्ञापन लिखो, डबिंग होती है यहाँ, हम बड़े लंबे समय तक डबिंग से जुड़े रहे,
7: बड़े
4: हमारे बच्चे भी, मेरी बेटी यहीं पढ़ी है वैष्णो कॉलेज में, यहाँ हिंदी सेक्रेटरी थी हिंदी क्लब की, डॉली उसको जोड़ा है यहाँ, जोड़ दिया है उसको यहाँ, हाँ नाम दिया है उसका, और वो सेक्रेटरी थी और उनका एक पूरा ग्रुप था 8-9 लड़कियों का, जितने भी कॉलेजों में कॉम्पिटिशन होते थे, विद्या शर्मा थी वो नाटक लिखती थी और ये सारे बच्चे नाटक खुद तैयार करके, और फर्स्ट प्राइज ये रिकॉर्ड था, फर्स्ट प्राइज वैष्णो कॉलेज को हमेशा
7: ये बच्चे भी तो जाते हैं, तो फर्स्ट थर्ड प्राइज
4: लेके आ सकते हैं, उनका ये रिकॉर्ड था कि वो जहाँ भी जाते थे हर साल कितने वर्षों तक फर्स्ट प्राइज लेकर के आते थे। और ऐसे बच्चे हैं वैष्णो कॉलेज के, तो हिंदी को बहुत बढ़ावा देते थे वो।
7: तो सालों पहले आप तो चेन्नई आई है, तो तब भी और अब भी और लोगों की मानसिकता में वैसे क्या बदलाव है।
4: पहले तो ये था कि यहाँ पर अभी भी की जगह पर है, हिंदी वालों को हिंदी सेठ बोलते हैं, है ना, आप लोग जानते होंगे। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर पहले जो आए खास करके बिजनेस करने वाले मारवाड़ी आए, सौकार पेट वाला इलाका जो है सब उसी से है, तो इनके दिमाग में ये था कि हिंदी वाले बहुत पैसे वाले होते हैं, वो बिजनेस करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो नौकरी पर ज्यादा वो करते हैं, बिजनेस में नहीं जाते हैं। और अपने यहाँ लोग कई तरह के हैं, कई मतलब पढ़ने वाले लोग भी हैं, नौकरी भी करेंगे। और दूसरा एक खास फर्क ये हो गया कि उत्तर भारत में लड़कियों को या तो बहुत पढ़ाएंगे या बिल्कुल नहीं, नौकरी नहीं करवाते, हमारे यहाँ नौकरी नहीं करती हैं लड़कियाँ। लेकिन दक्षिण में स्थिति बिल्कुल अलग है, यहाँ पोस्ट नहीं करेंगे, मतलब बड़ी डिग्री नहीं करेंगे, डिग्री तक कर लेंगे, उसके बाद वो नौकरी पर चली जाती है। तो विचार जो है वो उत्तर और दक्षिण में फर्क है।
7: लेकिन आजकल उत्तर भारत में
4: और अब जो है नहीं, वहाँ ऐसी स्थिति है कि जाएंगे तो बहुत बड़े पोस्ट पर चले जाएंगे,
7: लेकिन आजकल
4: अब बदल गई है स्थिति, अब वहाँ भी शिक्षा दे रहे हैं और लड़कियों को बहुत करते हैं। पहले भी करते थे लेकिन संख्या कम थी, अब स्कूल, अब तो गांव में भी बहुत, हम भी तो गांव के हैं लेकिन फिर भी हमारे माता पिता ने कभी अंतर नहीं समझा। हम लोग 5 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी, मैंने पीएचडी हिंदी में किया और अच्छी पोस्ट पर बैठी हूँ आज। ये मेरी सिस्टर है, इन्होंने सोशियोलॉजी में पीएचडी किया और ये प्रोजेक्ट लेकर काम करती थी यूनिवर्सिटी के, लेकिन अब उन्हीं से सीखिए। घर में 2 बिटियां हैं, छोटी थी तो इनको अपना नौकरी बीएचयू में था, उसको छोड़ करके वैसे ये भिलाई में है, दुर्ग में, तो वहाँ पति के साथ रहना पड़ा और बेटियों को देखना पड़ा, भाई परिवार को देखना हमारा पहला कर्तव्य है, उसको छोड़ दिया। कई बार मुझसे अब कहती है कि बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि इतना पढ़ के, हमने कहा तुमने अपनी बेटी, आज इनकी बेटी इंजीनियर है जो चेन्नई में मेरे साथ रह रही है, एक्सेंचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा कमाती है। दूसरी बिटिया मेडिकल पढ़ रही है लखनऊ में है। हमने कहा बेटियों को इतना बना दिया फिर क्यों फ्रस्ट्रेशन,
7: वही तो
4: उससे बड़ी शिक्षा और क्या है, सीधी सी बात है। औरतों के लिए यही है कि नौकरी करा बहुत अच्छी बात है, अच्छा घर में कोई कमी नहीं, हस्बैंड फॉरेस्ट में है तो पैसे अच्छे हैं, कोई ऐसी कभी कमी खली ही नहीं, वेल सेटल्ड है। वही नौकरी कब करते हैं औरतें, 2 तरह, या तो हमको जरूरत है तो हम करते हैं, या तो हमको लगता है हम क्वालिफाई हैं, हम नौकरी कर सकते हैं, घर डिस्टर्ब नहीं होगा, तो हमने किया कैसे, हमको बुलाया गया तो मैंने कर लिया, नहीं बुलाया जाता तो नहीं करते।
7: हाँ, वही तो सही।
4: और अब इतने वर्षों बाद, जैसे बीच में कई बार ऐसा होता था कि अरे छोड़ नहीं करेंगे, अब हो गया बहुत, लेकिन फिर सोचते थे कि नहीं अब इतने दिन तक कर लिया, घर नहीं बैठ सकते।
7: लेकिन आजकल के लड़कियां घर बैठने के लिए तैयार भी नहीं है।
4: करें
7: तो इसलिए महिला सशक्तिकरण हम बोलते हैं, तो महिला विद्यालय
4: सब काम करें। मैंने उसके कारण ये है कि आज महिलाएं या लड़कियों को इतना हम तैयार कर दें कि वो अपने रोजी रोटी के लिए 20,000 रुपया कमाए,
7: तो अपनी शक्ति को पहचाने, तो वो भी मर्द से किसी भी बात कम
6: नहीं। मैम अभी जो चेन्नई में रूल्स आ रहे हैं जहाँ पे तमिल पढ़ना कंपलसरी है, उसके वजह से जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है तमिल पढ़ने में, वो फिर भी पढ़ लेंगे बट हिंदी का जो है वो बहुत कम होता जा रहा है।
4: असल में उसका कारण ये है कि ये सब राजनीतिक कारण है, तो उससे क्या हो रहा है कि ये अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। अब आप खुद सोचो कि यहाँ के लोग बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते हैं, तमिलनाडु का कोई बहुत कम लोग होंगे जो बाहर जाना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं वो हिंदी सीख लेते हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं वो हिंदी नहीं सीखते हैं, कुएं के मेंढक ही रह जाते हैं। उत्तर भारत में कभी कोई कुछ नहीं कहता कि तुम तमिल मत पढ़ो, तुम तेलुगु मत पढ़ो, आप जहां जाते हो सब पढ़ो, तो ये नहीं करना चाहिए, गलत है, लेकिन कर रहे हैं यहाँ, तो उससे क्या होगा, हिंदी को आप तमिलनाडु में बंद कर दोगे, बाकी जगह तो कहीं बंद नहीं होगी। आंध्रा में वैसे ही चल रही है, केरला में तो फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, इनको मालूम है, आपके मैडम केरला से ही है, तो वहाँ फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ रहे हैं, वहाँ सब हिंदी जानते हैं, गांव में आप जाओ। और कर्नाटक की भी वही स्थिति है, वहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिंदी तर प्रदेश में हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग अपना ही विकास रोक रहे हैं, तो उसे हिंदी में क्या, हिंदी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केंद्रीय विद्यालयों में हिंदी है, जो समझदार स्कूल है वो हिंदी रख रहे हैं,
7: तो लोगों की
4: जो गवर्नमेंट स्कूल है वो हटा रहे हैं, तो उन्हें उनका ही नुकसान है भाई। किसी भाषा को सीखना कोई बुराई थोड़ी है, यदि आप इस तरह हटाते हो और तमिल कंपल्सरी कर देते हो, नहीं अभी न्यूज में आया था ना 2-3 महीना पहले कि उससे क्या हो रहा है कि तमिल कंपल्सरी तो कर दिया है, कई लोग तमिल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, स्कूल छोड़ के चले जा रहे हैं, नहीं पढ़ना है उनको तमिल भी।
6: हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड से CBSE अभी आ रहे
4: हैं, वो भी आ रहे हैं, टीचर्स भी नहीं रुक रहे हैं, टीचर्स भी छोड़ रहे हैं कि हमको तमिल नहीं पढ़ना है। अब जो यूथ आ रहा है तो वो तमिल बच्चे भी तमिल नहीं जानते, ना पढ़ना जानते ना लिखना जानते, केवल बोलते हैं, तो वो नहीं पढ़ेंगे। आप किसी पर बंदिश नहीं लगा सकते हो, कोई भी चीज सीखने के लिए बंदिश नहीं लगाई जाती, आदमी तभी सीखता है जब उसको वो चाहता है कि वो ये सीखे,
7: तो वही तो
4: वो छोड़ देना चाहिए, जिसको जो सीखना है सीखे, किसी पर आप बंदिश लगा के कोई काम नहीं करवा सकते,
7: तो अपनी मानसिकता
4: और हिंदी पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितना भी कोई कोशिश कर,
7: तो हिंदी का विकास
4: होगा, वैसे ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। और जो लोग बंदिश लगाते हैं वो खुद, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे नेता हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो अपना लिटरेचर, क्योंकि हम लिटरेचर से जुड़े हैं, वो अपना अनुवाद करवाते हैं, वो अपना हिंदी में अनुवाद करा रहे हैं, मेरे उस पर पिक्चरें बनाओ, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मुझे पुरस्कार मिल जाए, हिंदी के लोग ज्यादा जानेंगे, वो अपना सारा काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरों पर वो रोक लगाते हैं, तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप छूट दे दो, जिसको जो करना करेगा, जिसको जो पढ़ना है पढ़ेगा, इस पर हम क्यों रोक लगाएं। जैसे सब विषय है वैसे ये भी एक विषय है, किसी पर भी रोक नहीं, तमिल पर भी रोक नहीं लगाना चाहिए, किसी पर भी रोक नहीं लगाना, सबको सपोर्ट करो, जिसको जो मर्जी पढ़ेगा करेगा, उसमें क्या दिक्कत है।
7: तो आप अनुवाद भी करती हैं? मैम
4: बहुत ज्यादा अनुवाद करती हूँ, बैंकों से काम लेती हूँ, और अच्छा। अभी मैंने ये इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, उसका मैंने बहुत सारा अनुवाद किया, करीब 350 पेज का, और उसका पैसा भी मुझे अनुवादक के रूप में दिया गया, और जिससे मैंने करवाया, जिसके साथ मैं करीब बैठ करके, उनको भी मैंने पैसे दिए और लोगों ने किए, और साहित्य का भी, कविताओं वगैरह का, हाँ, कर लेते हैं, तो लेकिन यह है विद्यार्थी को साथ में बैठना पड़ता है और करते हैं, तो जो करता है उसके साथ में नाम डालते हैं। और जो ये बड़ा अनुवाद जो मैंने किया है अभी, ये वायरस पर है, ये जो हमको वायरस से जितनी भी डिजीज होती है, तो उसकी एक किताब है कि क्या क्या डिजीज होती हैं पानी से, और जो इससे सबसे वायरस जो पैदा होते हैं उससे।
7: अच्छा,
4: तो
7: अच्छा।
4: मेरा फिर 2 घंटे का उन्होंने भाषण भी करवाया पुणे में इंस्टीट्यूट में, तो मैंने उनको हैंडबुक एक पब्लिश करने का सजेशन दिया, तो अभी मुझे फिर वापस बुला रहे हैं शायद मई में कि आप यहाँ बोल कर गई हैं, और लोग कहते हैं मैडम को बुलाओ एक बार, हम सुनेंगे, और वो हैंडबुक एक निकाल। मैंने उनको कहा किताब का अनुवाद करने से कुछ नहीं होता है, रिसर्च करने से कुछ नहीं होता है, जो आप कहना चाहते हो कि ये हमें सेफ्टी लेना है, उसको आप पंपलेट से या जो भी

0: ऐसा भी अच्छा मिला और नाम भी मिलता है। अच्छा। अनुभव भी मैं इतना जान पाई कि दक्षिण का क्या कल्चर है। संगम लिटरेचर जो है इतना पुराना लिटरेचर है, उसमें उस समय राजा महाराजा का जमाना था, वो उनका खान पान कैसा था, उनके पहनावे कैसे थे, कैसे उनके किंगडम थे, कैसे तमिलनाडु और खास करके
1: पहले था
0: और कैसे अलग अलग क्षेत्रों में रेगिस्तानी इलाका, पहाड़ी इलाका, जलीय इलाका, इस तरह से बांटा हुआ था वो सारा हमको
1: इतिहास भी
0: है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
1: तो आजकल हिंदी साहित्य का विकास कैसे हो रहा है मैम, आपको क्या लग रहा है?
0: हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, हिंदी साहित्य नहीं, हर साहित्य का विकास हो रहा है, चाहे वो तमिल हो, लेखन बराबर हो रहा है, समय बदल रहा है उसके हिसाब से।
1: लोगों की रुचि बढ़
0: जरूर है, बढ़ नहीं रही है, किताबें आजकल लोग कम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको बढ़ावा देना चाहिए,
1: आधुनिक तकनीकी विकास के कारण,
0: और ऑनलाइन ज्यादा कुछ कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि अब ये जमाना नहीं रहा कि आप मोटे मोटे नॉवेल लिखें,
1: वो भी सही
0: है ना, आप छोटे छोटे नॉवेल लिखिए, छोटी छोटी कहानियां, लघु कथाएं आ गई हैं, थोड़े में अपनी बात कहिए, लेकिन ऐसा एक हद तक, बाकी तो जो थोड़ा बड़ा है वो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो परंपरा खत्म हो जाएगी। और रही रुचि जागृत करने के बाद, तो वो जबरदस्ती किसी में रुचि जागृत नहीं कर सकते हैं,
1: तो अपनी
0: बच्चे को जो लिटरेचर पसंद आएगा या लोगों को जो अच्छा लगेगा वो पढ़ेंगे, और हमको ऐसा लगता है कि लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ते हैं।
1: तो साहित्य के प्रति लोगों के मन में रुचि बढ़ाने के लिए सभा की तरफ से कुछ आप लोग कर रहे हैं या
0: नहीं? साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पाठ्यक्रम वगैरह चलाए जा रहे हैं, हिंदी के प्रति जरूर रुचि बढ़ने का काम हो रहा है, बढ़ाने का काम हो रहा है, कि कोर्सेस वगैरह चला रहे हैं, स्पोकन हिंदी जिसका बोलबाला ज्यादा है, लोग जानना चाहते हैं, हर कॉलेज में यहाँ देखिए स्पोकन हिंदी के क्लासेस चल रहे हैं, और हमारे पास भी बहुत प्रपोजल आ रहे हैं कि मैडम हमारा आप सहयोग करें तो हम स्पोकन हिंदी अपने यहाँ चला लें, चलाइए, मैंने कहा जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे।
1: तो
0: साहित्य के रुचि के लिए ऐसा कुछ क्या कदम उठाया
1: जाए, क्योंकि आजकल तो वैसे लोग तो वैसे साहित्य से हटते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, तो साहित्य
0: मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है, साहित्य
1: व्यावहारिक रूप से देखते हैं।
0: अब टीवी आ गया ना, अब ये भी तो फर्क पड़ गया है ना, कि अब खाली प्रिंट मीडिया नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक में भी रेडियो देखिए वैसे ही चल रहा है, आज भी गाँव में कई जगह टीवी नहीं है तो रेडियो वैसे ही चल रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ कम हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज भी ट्रेन में बहुत सारे लोग आपको नॉवेल पढ़ते हुए दिख जाएंगे, आज भी लाइब्रेरी में जाने वाले लोग मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है,
1: कम
0: हम वो भी नहीं मानते हैं, गुणवत्ता नहीं कम हो रही है, टाइम के हिसाब से लिखा जा रहा है,
1: तो समय नहीं है,
0: समय के हिसाब से लिखा जा रहा है। अब वो जमाना नहीं है कि हम पंत और निराला और इनकी सबकी बात कर लें, जो आज लिख रहे हैं हो सकता है 20 साल बाद हम आज के लोगों को याद करें।
1: जी, बदलती परिस्थितियों के बारे में आपने कुछ लिखा होगा?
0: मैंने तो काफी सुना देती हूँ। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे लोग बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा आने लग जाती है, कहते हैं मतलब खुशियाँ, कहते हैं ना कि हम खुशियों के लिए भी उनको वो चाहिए, मैंने ऐसे होंगे तो हम खुश होंगे, हम पार्टी मनाएंगे तो खुश होंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना, खुशी तो आपके अंदर है ना, आप हर क्षण खुश रहो। तो हम अपने बच्चों को कई बार बोलते हैं, खुशियां कहीं होती नहीं है, हर क्षण आप खुश रहते हो उनको बटोर। कॉलेज में भी कई बार होता है, जैसे बच्चा कोई है मुंह ऐसे लटका के बैठा रहता है, जब मैं ऊपर थी, अब तो नीचे आ गई हूँ, कुल सचिव बन गए, तो इतना मौका नहीं मिल पाता है, जब थी तो बच्चे आएंगे, बच्चे अपनी अपनी समस्याएं लेके आते थे मेरे पास, और मैं उनको सुलझाती भी, कई बच्चा रोएगा दुखी होगा, मैं उसको बोलता हूँ, हमने कहा तुम लोग क्यों मुंह लटका लेते हो हर बात में, खुश रहो, हंस लो, हंसने में क्या जाता है, मैंने कहा जो हंसते हैं उनमें पॉजिटिव एनर्जी होती है, लोगों के पास जाना चाहिए, यदि आप हमेशा रोते ही रहोगे तो आपके पास कोई आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होती है, तो खुश रहो, हंसते रहो, सबके जीवन में तकलीफ है। तो उसी पर मैंने एक कविता लिखी थी, पुरानी है, 13 में लिखी थी, खुशियों के नन्हे पल छिपे रहते हैं गौरैया से आंगन में, ओसारे में, आंगन की तुलसी में बनाते हैं घोंसला। ये एक सिंबोलिक कविता है, गौरैया माने छोटी चिड़िया होती है ना, वो कितनी सुंदर लगती है और कहीं भी छुप के बैठ जाती है, उसके लिए बड़ा चीज घोंसला नहीं चाहिए होता है। तो ऐसी खुशियां जो हैं वो आप बड़ी चीज में मत तलाशो, हर छोटी छोटी चीज, आपकी मम्मी के लिए आपने एक बोतल पानी भर के रख दिया वही खुशी है, मम्मी से आप मम्मी एक कप चाय बना दूं क्या, मम्मी के लिए वही खुशी, और आपको भी अच्छा लगेगा उसी जगह पर, मम्मी को मम्मी कहे बेटा एक कप चाय पिलाओ, हमें टाइम नहीं है। तो देखिए फर्क कितना होता है ना, तो हर इंसान अट्रैक्शन चाहता है, अब ये नहीं है कि हम लोग मम्मी हो गए तो

0: हम लोग जिंदगी भर करते ही रहे और बेटियां लोग उसका फायदा उठाए। भाई मम्मी को भी तो लगता होगा कि मेरी बिटिया मुझे एक कप चाय पिला दे, एक गिलास पानी पूछ ले तो खुश हो। तो मैंने एक कविता लिखी कि जैसे चिड़िया कहीं भी छुप जाती है उसके लिए तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती है, घोंसला बनाऊं तलाशूं, तो ऐसे खुशियां तलाशने की जरूरत नहीं है, खुशियां हैं, उसको आप अपने जो कहते हैं ना इटर्नल फील, खुशियों के नन्हे पर छिपे रहते हैं गौरैया से आंगन में, ओ सारे में आंगन की तुलसी में बनाते हैं घोंसला, ठंडी हवा बनकर मन को देते हैं ठंडक, खुशियों के नन्हे पर छिपे रहते हैं गौरैया से कभी ओस की ठंडी बूंदों में। कभी आप नंगे पांव चले हो ड्यू ड्रॉप्स गार्डन में? ड्यू ड्रॉप्स को फील किया है अपने तलवे में?
1: महसूस नहीं किया होगा बच्चों।
0: चलो ओस की बूंदें आप चलो, कहते हैं आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है ड्यू ड्रॉप्स, जो गार्डन में आप नंगे पांव
2: चले। आजकल गार्डन ही दिखने को नहीं मिलता है, उधर तक जाने में पूरा टाइम।
0: अब तुम लोग उठोगे ही, अब 8 बजे कॉलेज जाना है तो 7 बजे उठोगे तो कैसे चलेगा, है ना? तो अब यही पर है कि ये सब चीजें हमको मन से फील करना है, तो वही मैंने दिया है यहाँ पर। कभी ओस की ठंडी बूंदों में, कभी उड़ती तितलियों में, कभी मंद जलते दीपक और कभी सुबह की पहली किरण में, खुशियों के नन्हे पर छिपे रहते हैं गौरैया से आंगन में, ओसारे में आंगन की तुलसी में बनाते हैं घोंसला। फिर नन्हे घरों ऊंची इमारतों फूलों और कैक्टस में भी, रिस गए रिश्तों में भी, आज रिश्ते खत्म हो गए हैं उसमें भी खुशियां हैं, तुमको ढूंढने की जरूरत है। मुट्ठी भर सपनों में खुशियों के नन्हे पर छिपे रहते हैं गौरैया से आंगन में, ओसारे में आंगन की तुलसी में बनाते हैं घोंसला। ये सब आपके इमेजेस हैं जो मैं दे रही हूँ। अति महत्वाकांक्षा की कटीली बाड़ में, पकी संवेदनाओं और अच्छाइयों की डोर में, खुशियों के नन्हे पर छिपे रहते हैं गौरैया से आंगन में, ओसारे में आंगन की तुलसी में।
1: बढ़िया, क्योंकि आजकल की जिंदगी में किसी को भी टाइम नहीं है, किसी को भी समय नहीं है, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं,
0: दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है,
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया कविता सुनाई है। तो बच्चे भी सोचेंगे कि आजकल ना, कल तो वैसे उसकी बूंद ढूंढने के लिए तो निकले
2: जाएंगे।
0: चले जाओ कभी गार्डन में, जाओ देखो कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह, बारिश अब आती है, ठंडी हवा चलती है, बाहर थोड़ा घूम लो, अपनी मम्मी के हाथ पकड़ के चलो मम्मी नहा के आते हैं। जैसे मेरी बहू है तो हम लोग बीच में, जैसे एक दिन वो थी श्रेया, तो श्रेया के साथ मेरी इनकी बिटिया, फिर एक बहू के साथ तो कई बार चलो मम्मी नहाते हैं, हम दोनों खड़े हो जाते हैं अपना बारिश में नहा लेते हैं। एक दिन जीजा आए थे, मतलब मेरे पति देव बनारस से आए थे, तो वो मैं और मेरी ग्रैंड डॉटर है 5 साल की, तीनों हम तीनों बारिश में पीछे खूब नहाए, खूब डहाए, खूब नहाए, अच्छा लगता है नहा के। तो देखो
1: भाई, तो तकनीकी विकास के कारण ना वैसे लोग भी आपसी रिश्तों
0: में कहीं पर आप जो अपनापन या ये सब चीजें आप ढूंढोगे तो आप ढूंढने से कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता है, वो आपके पास है, उसको आपको फील करने की जरूरत है,
1: अपने अंदर की खुशी को ढूंढना है
0: भाई। और हर में कमी होती है, हर में, है ना, तो हम कमी को क्यों देखें? जैसे एक बॉटल होती है पानी की, तो हम ये कहें कि आधी भरी है, हम ये क्यों कहें आधी खाली है?
2: जी जी,
0: ये हमारे व्यू को दर्शाता है। यदि हम कहते हैं आधी खाली माने आप नेगेटिव है, यदि हम कहते हैं आधी भरी है तो आप पॉजिटिव।
1: हाँ, सही बात।
0: तो जिंदगी को
2: आप ऐसे बोलते हो पर कुछ लोग ऐसे, मतलब अगर आप देखोगे कि आपको पूरा चाहिए तो आपको वो फायर होगा, अगर आपको चाहिए कि पानी पूरा भरा हो तो आप में वो फायर आएगा कि मुझे पूरा चाहिए, मैं क्यों
0: मेरे को आधा लूं, तो वो इसके लिए फिर आपको तो काम करना पड़ेगा ना।
2: जी जी बिल्कुल
0: बिल्कुल। जब आप वही मैंने कहा ना कि कोई भी चीज या कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। यदि आपको पानी की बोतल पूरी चाहिए तो जो आधी है उसको जाकर कहीं फिल करना पड़ेगा ना, भरना पड़ेगा ना आपको, आपके लिए कोई भरे का नहीं देगा, हालांकि मम्मी है तो भर के दे देगी, अलग बात है, लेकिन वैसे यदि हम इस भाषा में, जो हम भाषा में बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि जब आधी बोतल है उसको आपको पूरा करना है तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहां तक जाना पड़ेगा, पानी भर के लाना पड़ेगा, तभी बोतल भरेगी।
2: जी जी जी,
0: किसी और के ऊपर आप निर्भर नहीं कर सकते हो।
1: सही,
0: तो वही जिंदगी में भी हमारे हैं।
1: सही,
0: तो ये कबीर के बहुत सारे दोहे पढ़ते हैं ना कि वो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मैं खोजूं, जो मन खोजूं अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। भाई सब में कमी है, हमें भी तो है, तो हम उसको दूसरों में क्यों देखें कि वो कम है, उसमें ऐसा है, उसमें जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करो
2: जी।
0: और हम लोग करते, मैं तो करती हूँ, कोई चीज खराब भी बनी होगी तो मैं कभी खराब नहीं बोलती, मैं कहती हूँ अच्छी है और अच्छा हो सकता है और अच्छा बनाओ कर सकती हूँ। क्या बुरा है इसमें बोलने, किसी का कुछ बुरा हुआ? हमारे यहाँ बच्चे हमको इसलिए अप्रिशिएट करते हैं कि ये मैडम कभी भी ये नहीं कहती कि तुम ये नहीं कर सकते, कभी ये नहीं कहती है कि मतलब डांट दें कि अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे ना, तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, दुनिया में हर चीज हर आदमी कर सकता है, खत्म। एक लाइन में जवाब दो ना,
1: दूसरे को प्रेरणा देके तो वही लोग लीडर बनते हैं, जैसे आपकी तरह
0: लीडर नहीं बनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम किसी को हंस कर कुछ बोल दें, जहाँ गलत है उसको कह भी दें भाई देखो गलत है तो मैं ऐसा नहीं करना, बीच पीछे बोलने की बजाय सामने बोल दो ना आपने ये किया, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, डांटने की जरूरत ही नहीं, यदि आप उतना ही बोल देते हैं सामने वाले को मालूम है कि उसकी क्या गलती है, तुरंत पकड़ लेगा, हंस के बोलो ना, उसको डांट के बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब कोई बच्चा क्लास देर में आ रहा है तो उसको क्यों डांटना है, भाई तुम इतनी जल्दी आ गए भाई, आगे से ध्यान रखो, खत्म। और हम ऐसे करते हैं, हम ऐसा नहीं कि हम यहाँ बैठ कर आपको बोल रहे हैं, आप हमारे डिपार्टमेंट जाइए, आप पूछिए मेरे बारे में, आपको सब बताएं। जितने बच्चे आज भी जी। मैं नीचे हूँ ना, जब तक बच्चे झांक झांक के मुझे देख नहीं जाते हैं तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती है, जब हम निकलते हैं ऊपर आते जाते हैं, क्या मैम हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ जाके आप बैठ गई,
1: तो वही तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है,
0: बिल्कुल अच्छा है। और हमारे टीचर, हमारा पूरा स्टाफ एक बार सवेरे 10:30-11 के बीच में जरूर मिलने आता है मेरे से, हमने कहा मेरे को मिलने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऊपर और नहीं, हम बिना देखे आपको नहीं ऊपर जाएंगे, क्यों क्यों, हम कुल सचिव हैं इसलिए नहीं, हम लोगों ने जो रिश्ता बनाया है इसलिए, हमको सुधा ने क्यों बुलाया, कुल सचिव होने के नाते नहीं बुलाया है, हम लोग इतने क्लोज हैं कि वो हर क्षण मुझे याद करती है, अभी से तो मेरा परिचय भी हुआ है, बस ये दूसरी बार हम मिल रहे हैं, लेकिन सुधा से तो हमारा 20-25 साल पुराना रिश्ता है और बहुत आत्मीय रिश्ता है, और शायद उम्र में भी हम दोनों एक ही
1: हैं। अच्छा, वो कह रही थी मैं।
0: हाँ, हम दोनों एक ही हैं, लेकिन देखिए वो हमेशा मेरे पांव छूती है, इसलिए नहीं कि हम उसके गुरु हैं, एक आत्मीय रिश्ता
1: है।
0: और हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं, हमको एक बार फोन करें कि मैडम ऐसा है, हम चले जाते हैं, हम उसे ये भी नहीं पूछेंगे कि तुम हमें क्या खर्चा दोगे, या हम उसे ये भी नहीं पूछेंगे कि तुम हमारे लिए कार की व्यवस्था करो, बच्चे जहाँ हमारे स्टूडेंट है मैडम ये काम है, या मैडम ऐसे आ जाइए, ठीक मैं पहुंच जाऊंगा, बस इसलिए
1: प्यार
2: प्यार
0: रिश्ता तभी है जब आप प्यार करते हो
1: जी। हमारे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: एक अच्छे इंसान बनो, और कोई संदेश नहीं,
1: बस
0: सबसे हंस के मिलो। हम तो कहते हैं कि यहाँ तक कि जो हमारे काम वाली जैसे है, हम अपने घर में देखो ना, हमने अपनी बहू भी जब हमारी आई तो मैंने उसको बोला कि हम लोग कुछ भी खाएं, लेकिन हमारी जो पार्टी है उसको ताजा नाश्ता मिलना चाहिए। आज भी बिल्कुल मजाल नहीं है उसकी, मैं जब बनाती हूँ कॉफी, पहला ग्लास कॉफी मैं अपनी काम वाली को देती हूँ, आप विश्वास करेंगे? पहले उसकी जब चाय बनती है तो पहले उसके ग्लास में मैं चाय छानूंगी, उसके लिए बिस्किट ब्रेड जो भी है बासी कभी नहीं देती। और मैंने घर में भी बोला, और ये किससे मैंने सीखा? अपनी सास से सीखा,
1: अपनी परिवार,
0: हमारे हमारी जो सास थी, मम्मी तो हमारी जीनियस। हम ये जो संस्कार मिले हम बहनों को, कि हम वही बोलते हैं कि हम आज भी सुबह बैठ के वही बात कर रहे थे, हमको लोग 4 गाली भी दे देंगे तो भी हम उसके लिए करते हैं, क्योंकि ये संस्कार हमें अपने माता पिता से,
1: संस्कार तो
0: कि हम किसी से ऊंचा नहीं बोल सकते, और कोई हमको कुछ बोल भी देगा तो हम वो फिर बाद में आएगा तो हम उसको गले लगा लेते हैं, ये हम लोगों का नेचर है। और ऐसे हमारी सास जो हैं, उन्होंने एक शब्द कहा था, बेटा तुम घर में कुछ भी खाना लेकिन नौकर चाकर को हमेशा अच्छा देना, और वो आज तक हम नहीं भूले। और मैंने अपने बहू को भी बताया, मेरी अम्मा ऐसा बोली थी, मेरी सास उनको अम्मा बोलते थे, मेरी अम्मा ये बोली थी और मैंने हमेशा वही किया, तुम भी बेटा वही करना। तो जो पार्टी के चेहरे पर हमारी जो नौकरानी है, आज 15-16 साल हो गए वो यंग, मतलब आई होगी शायद, बूढ़ी हो गई, मेरे घर में छोड़ के नहीं गई, तो वो ऐसा है, मतलब उसको जब मैं देती हूँ पार्टी, नींबे के कॉफी या चाय जो भी पूछ लेती हूँ, हमारे दोनों बनता है, फिल्टर कॉफी भी रहती है चाय भी, ना सापड़नो पट्टी सोलनों को पट्टी इधर सापड़नो, तो उसको मैं बना के बिस्किट के साथ में, फिर नाश्ता वास्ता बाद में देती हूँ, उतना वो पहले पी लेती है, नींबे सापड़ गए अपना पात्रों पर, फिर वो अपना झाड़ू लगाएगी, बर्तन धोएगी, पोछा लगाएगी, सब करती है, नहीं छोड़ के जाती है। और फिर अपना जो भी बीच बीच में मैं उसको 2 किलो चावल ला के दे देती हूँ, हर महीने उसका बांध के रखा है 2 किलो चावल। तो ये ऐसा नहीं कि हम बड़े दानी हैं, मतलब मुझे लगता है इसमें क्या है, हम इतना हम लोग खाते पीते हैं उनके लिए क्यों नहीं कर सकते। किसी आपका आपका अटेंडर है कि कोई है, उसको बोलो तुम 2 समोसा खा लेना मेरी तरफ से, उसके चेहरे पर खुशी, वो आपके लिए दौड़ दौड़ के करेगा। हम अपने यहाँ सभा में भी सब चीज का बहुत ध्यान रखते हैं और सब लोग वही बोलते हैं सभा में कि आपके लिए सब इतना दौड़ दौड़ के काम क्यों करते हैं। हमने कहा वो करवाना आना चाहिए।
2: क्यों? आपकी सीक्रेट बोल दी।
0: काम करवाना आना चाहिए आपके लिए। अब जैसे हम 1 समोसा खा रहे हैं, उसके लिए भाई 2 समोसा बांध दो ना, क्या है तो ये खुशी है। बस समाप्त करें।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए हमसे बात किए, बहुत अच्छा लगा, हमारी लड़कियों को भी
2: बहुत अच्छा लगा,
0: हमें भी अच्छा लगा। हमको हम चाहते हैं कि बच्चों से हम मिलें, उनके मन की बातें जानें।
1: पहले भी आप आ चुकी है,
0: पहले बहुत पहले एक बार आई थी,
1: एक बार
0: इंटरव्यू हुआ है मेरा, इंटरव्यू हुआ है,
1: कार्यशाला दी देनी आई थी आप।
0: नहीं वो तो आई थी, लेकिन हम यहाँ भी हमारा रिकॉर्डिंग भी हो चुका है काफी साल, तब विद्या जी थी, डॉक्टर विद्या शर्मा थी, उनके साथ काफी लंबी बातचीत हुई थी हमारी।
2: हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं मैम, आप इतने साल के बाद आए, पहली बार हमको यहाँ पहली बार रिकॉर्डिंग रूम आ रहे हैं।
0: हाँ अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, किसी के साथ ही सही। और वैसे मैं MOP वैष्णव कॉलेज से लगभग 25 सालों से जुड़ी हूँ, और लास्ट ईयर वो आपको मालूम है ना सम्मान भी दिया गया था, जो निर्मल निर्मला मैडम जब रिटायर हुई, आपकी जो प्रिंसिपल थी ना, जब वो रिटायर हुई है, तो वो लोग जो MOP वैष्णव से जुड़े थे लंबे समय तक, उनको सम्मानित किया गया, मुझे भी सम्मान दिया गया MOP की तरफ।
1: तो बात करके ना आपसे भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है,
0: आनी ही चाहिए,
1: हमेशा हमेशा
0: आनी ही चाहिए।
1: जैसे किसी से भी हम बात करें तो जरूर हमें महसूस हो,
0: मतलब हम देखो मेरा हमेशा ये रहता है कि हमसे जब कोई मिले तो उसको लगे कि मैं इनसे फिर मिलूं,
1: फिर मिलूं।
0: तो इसीलिए कभी किसी के सामने अपना रोना नहीं रोना चाहिए। अरे हम सब कर सकते हैं यार, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, सब कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन सी दुनिया में ऐसी चीज है कि नहीं कर सकते हैं? इतने बड़े बड़े लोग देखे क्या क्या करके गए, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम औरत हैं, ऐसा मत सोचो।
1: तो इस खुशी में एक और कविता सुनाइए आप।
0: अब मैं आपको ऐसी तो नहीं कविता सुनाऊंगी, एक गाँव वाली कविता है, तो वो तो आनंद लेने वाली चलेंगे। एक हम ऐसे ही भारत करके सुना देते हैं, क्योंकि एक और कविता लाई थी गांधी, वो थोड़ा मैं बांध कर भी सुनाऊंगी, बड़ी सीरियस कविता है, बच्चों के उसमें नहीं है। और एक गांव की कविता है, वो बच्चे आधी शब्दावली नहीं समझेंगे, तो वो भी नहीं, एक कविता है भारत नहीं, काफी लंबी है वो, मतलब इस ढंग की है कि गांव में कैसे लोग खेतों में जाते थे, कैसे चबेना बनता था, सुनाऊं यदि चाहो, नहीं तो एक है भारत,
1: चाहिए
0: ठीक है, तो पहले भारत वाला सुना दूं। लोग कहते हैं ना इंडिया कैसे है, इंडिया क्या करेगा, ग्लो करेगा, है ना, भारत, भारत के बारे में बहुत बातें, आप तो मोदी जी बहुत बातें करती हैं, तो मैंने भी कुछ बात की है। भारत में हंसती है धूप, खिलखिलाता है नया सवेरा, छल छलाती हैं नदियां, झरते हैं झरने, बहती हैं खुशियां। भारत में हंसती है धूप, खिलखिलाता है नया सवेरा, छल छलाती हैं नदियां, झरते हैं झरने, बहती हैं खुशियां। बारिश की ठंडी फुहार, पेड़ों के साय में पकते सपने, आशाओं का नमक, पेड़ों के साय में पकते सपने, आशाओं का नमक। भारत में हंसती है धूप, खिलखिलाता है नया सवेरा, छलछलाती हैं नदियां, झरते हैं झरने, बहती हैं खुशियां।
1: बहुत बढ़िया, क्योंकि भविष्य की तरफ एक संदेश दिया।
0: और क्या होता है भारत में, हम परंपरा में जीते हैं, हमारा एक अलग कल्चर है ना, तो परंपरागत संस्कारों में, जिद्दी भावों में, मर्यादा बोध और कुलीन विचारों में होता है नमक का स्वाद। भारत में हंसती है धूप, खिलखिलाता है नया सवेरा। कई बार जुड़ते, कई बार टूटते सपनों में, कई अधूरी ख्वाहिशों, पूरी इच्छाओं में, कई बार प्रेम के ढाई आखर और राम राज्य के स्वप्न में बसता है भारत, और भारत में हंसती है धूप, खिलखिलाता है नया सवेरा।
1: बहुत बड़ी बात की,
0: मैंने एक आप कर सकते हो कि इमेजिनेशन कि भारत कैसा होना चाहिए, क्या ऐसा आज है, हम ये इमेजिन करते हैं। अब ये सुना तो देते हैं, पता नहीं आप लोगों को कितनी पसंद आएगी,
1: सुनाइए।
0: उर्मिला को तो बहुत मजा आएगी। हाँ, इसमें लो हो गई सुबह फिर, एकदम गांव का माहौल जी। लो हो गई सुबह, फिर होने लगी है सुगबुगाहट। घनौची पर चाची रख रही हैं पानी से भरी बाल्टी। घनौची, घनौची जानते हैं, गांव में नापदान होता है, माने बाथरूम जहां बर्तन धोए जाते हैं, वहां ऊंचा सा ऐसे पर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। तो उस जमाने पर प्लेटफॉर्म डिवाइड करके बनाते थे, जो हमने अपने घर में देखा, उस पर कलसे रखे जाते थे पानी पर, उस जगह को घनौची बोलते थे। तो वहां कलसे माने बर्तन मटके, वो पीतल के तांबे के, वो रखे जाते थे। तो ये घनौची पर चाची रख रही है पानी से भरी कलसी। सामने पड़ा है ढेर सारा काम, सवेरे 4 बजे से पीस रही थी गेहूं, चकिया चलाते थे, अभी चूल्हा सुलगाना है, जलाना नहीं है, दोनों फर्क है, ये गांव का शब्द, चूल्हा सुलगाना है, सुलगता है एकदम, मन भी सुलगता है उसके साथ, हैं? आग जल जाए तो क्या, उस जमाने में लकड़ी गीली हो गई, कुछ हो गया, आंसू चू रहा है, एक कपड़े में खाना बनाना, किचन में जाकर के बहुत कुछ होता था, हमने अपने घर में देखा। तो वो वही चीज है, सवेरे 4 बजे से पीस रही थी गेहूं चाची, अभी चूल्हा सुलगाना है। चाचा ने खोल लिए है बैल, पकड़ ली है पगही, जो बैल का वो होता ना रस्सी, उठा लिया है हल, मार कर टिटकारी, चलते बने खेत पर चले गए। बाबा ग्रैंडफादर बैठे बैठे बना रहे हैं सन की रस्सी। आपको मालूम है सन एक क्या बोलेंगे, जिससे कि रस्सियां बनाई जाती हैं, वाइट कलर का एक कुछ घास होती है, उस घास को तालाब में महीनों तक सड़ाया जाता है पानी में, फिर उसको निकाला जाता है और उसमें से रेशे निकलते हैं, थ्रेड्स, उनको निकाला जाता है, फिर उससे रस्सी बनती है। ये मेरे बाबा किया करते थे बैठे बैठे। ये जो लिख रही हूँ मैं, जो मैंने देखा है उसको लिख रही हूँ। तो बाबा, लेकिन उसको मैंने फिर जोड़ दिया है उनके एक्सपीरियंस से। तो बैठे बैठे बाबा बना रहे हैं सन की रस्सी, उनके माथे पर सिमट आई है समय की चादर। बूढ़े दिखते हैं, मैंने कितने बूढ़े हो गए हैं यहाँ रेखाओं से मालूम चलता है। उतरती धूप खेलने लगी है आंगन ओसारे में, शाम हो गई है। कोने में लगी तुलसी अनमनी सी सोई पड़ी थी, अब जगने लगी है।
1: प्रतीकात्मक।
0: लो हो गई फिर सुबह। अब सुबह हुई तो फिर क्या हुआ, छोटी छोटी चिड़िया आ जाती हैं आंगन में। गौरैया पंख पसारे फुदक रही है, धुआं उठ रहा है, अदहन चढ़ा है। अदहन माने चूल्हे पर बड़े से बर्तन में पानी खोलता था और उसी में फिर वो जब खोलने लगता था पानी तो चावल डाला, दूसरा चूल्हा है उसमें पानी खोला है, दाल डाली, पक रहे हैं। कुकर नहीं होते थे ना उस जमाने में, अब तो कुकर चढ़ा दिया। तो धुआं उठ रहा है, अदहन चढ़ा है, कुछ पकने की सुगबुगाहट आने लगी है। लो हो गई सुबह फिर। फिर क्या हुआ, कुछ चबेना पकेगा, जो मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट खाते हैं उसको गांव में चबेना कहा जाता है। कुछ चबेना पकेगा, खेत पर जाएगा, पेट में पड़ेगा तो काम आगे बढ़ेगा। भाई हल जोत रहे हैं, है ना, तो चाचा हमारे काम कैसे करेंगे जब तक कुछ खाएंगे नहीं। तो चाची क्या करती थी, पका के या तो मजदूर ले जाए, या तो पति प्रेम ज्यादा आज जाग जाए तो अपने सिर पर रख के खुद ही खेत पर चली जाती थी वो अपने पति को खिलाने के लिए। तो वही है, कुछ चबेना पकेगा, खेत पर जाएगा, पेट में पड़ेगा तो काम आगे बढ़ेगा। लो हो गई सुबह फिर, होने लगी है सुगबुगाहट। लंबी कविता है थोड़ी, इतनी और है। दादी, सब परिवार के लोग आ गए, देखिए चाची आ गई, चाचा आ गए, सारे लोग आ गए, बाबा सब आ गए, दादी। अब दादी, मेरी दादी जो है बड़ी छोटी सी थी, एकदम गोरी चिट्टी नेपाली सी लगती थी, और वो 2 घंटा नहाती थी बैठ कुएं पर जाती थी रस्सी बाल्टी लेके। घर के सामने कुआं था, उस समय हैंड पाइप तो होते थे लेकिन वो हैंड पाइप पर नहीं नहाती थी, आंगन में लगा था। कुएं पर जाती थी, अपनी खुद छोटी छोटी बाल्टी हुआ करती थी, छोटी बाल्टी से बड़ी बाल्टी में पानी भर लेती थी, साबुन नहीं लगाती थी।
1: अच्छा।
0: 2 घंटे नहाती थी मिट्टी लगा के। और उनकी जो स्किन है वो, जब उनकी डेथ हुई है तो हमारे ख्याल से 100 साल की होगी, 99-100 ईयर्स। स्किन आप लोगों की स्किन को भी मात कर दे, कोई झुर्री नहीं, सब दांत सलामत, चने खाती थी, कोई चश्मा नहीं, और 2 घंटा मलमल के एक्सरसाइज करके स्किन की 2 घंटा नहाती थी वो दादी पक्का पूरा काम करती थी। सुबह 4 बजे वो भी उठती थी, दाना भूसा दे

0: जानवरों को भैंसे, गैया, बकरी, बैल सब होते थे। सबको सानी पानी करना, बराछा लगवाना, मजदूर है उसके साथ में मिलके घोड़े पर सारा डलवाना, दूध निकालना, सारा काम। तो दादी छोटे छोटे पांव से नाप रही हैं जमीन, बराछा लिए बुहार रही हैं द्वार, सानी पानी में लगी हैं, टिटकारती हैं बकरियों को, डालती हैं चारा। इधर जा। तो टिटकारती हैं बकरियों को, डालती हैं चारा, कटिया काट कर रखी है झउओं में। उस समय कटिया काटने की मशीन आती थी, उसमें हम लोग बड़े छोटे छोटे थे तो हम लोग भी लगे भिड़े रहते थे। इधर से कटिया डालो, मतलब कोई भी चारा डालो, और ऐसे से मशीन चलाते थे तो उधर से गिरता था, तो वो अकेले कर लेती थी। इधर से डालेंगे, उधर से चलाएंगे, उधर से डालेंगे एक हाथ से तो चलाएंगे मशीन। तो कटिया काट कर रखी है झउआ बास्केट, झउओं में गैया चाट रही है बछिया को, और दादी प्यार करती है गैया को, क्योंकि दूध लेना है। दादी के हाथों में बरकत है। कहते ना पुराने जो बुजुर्ग होते थे, बड़ा काम करके और थोड़े में कितना काम कर लेते थे, कहते बरकत है। तो दादी के हाथों में है बरकत, लक्ष्मी का वास है घर में, सरस्वती विराजमान है वाणी में। दादी बोलती नहीं, बस काम में लगी रहती हैं, शायद इस दुनिया में जीने की जद्दोहद में लो हो गई है सुबह अब होने लगी। मैंने पुराने जमाने में लोग कितना काम करते थे, हैं इतने, मतलब इतने परेशानियों में जीवन यापन करते थे, सब चीज घर में उगाना, पीसना, बनाना,
1: फिर भी खुश रहते थे,
0: तब भी खुश रहते थे। और अब सब ना कपड़ा धोना, ना झाड़ू लगाना, कुछ नहीं करना है, तभी लड़कियों के मुंह लटके रहते हैं इतने लंबे। तुम्हारे ना लड़कियां, अलग बात है,
1: खुशी चुनना है।
0: ऐसी स्थितियां हो रही हैं, समय बहुत बदल रहा है, लेकिन लोगों की सोच भी बहुत बदल रही है। तो बस इतना ही है, बस लड़कियों को यही संदेश है कि अब तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, हर चीज में सुविधा है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, फिर क्यों आप लोग रोबोट बन रहे हो? रोबोट बनने की जरूरत नहीं है। हंसो, खेलो, कूदो। और एक और संदेश देंगे आपके, जैसे हम हैं, हम अपने लिए मानते हैं कि हर एक इंसान के अंदर हमेशा एक छोटा बच्चा जी। कई लोग कहते हैं ना, हम बहुत किसी से मिलेंगे नहीं, हम बड़े हो गए, बड़े गंभीर हो गए, किसी से मिलेंगे नहीं, लेकिन पीठ पीछे गलत काम बैठ के करेंगे। नहीं, आप हमेशा सिंपल रहो, सबसे मिलो, अच्छे रहो, और अपने मन के अंदर एक छोटा बच्चा जीवित रखना। जब तक बच्चा आपके मन में जीवित रहेगा, आप बहुत अच्छे रहोगे। जहां बच्चा मर गया, तो आप बड़े हो जाओगे, फिर आप हमेशा के लिए बड़े हो जाओगे और हमेशा गलत काम करोगे। गलत का मतलब गलती नहीं, मतलब कुछ भी, किसी से मिलोगे नहीं, किसी से बात नहीं करोगे, उठपटांग हरकतें करोगे, साइकोलॉजिकल कुछ होगा। इसलिए बच्चा मन के अंदर जीवित रखना, खुश रहोगे, मस्त रहो।
1: बहुत बड़ा संदेश दिया है मैंने,
0: मस्त रहो, जिंदगी मिली है ना, हाँ, कोई कुछ बोलता है ठीक है, हमको कोई कहे अच्छा नो प्रॉब्लम, कोई कहे बुरा नो प्रॉब्लम। उसके कहने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे, उसके कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे, हमें मालूम है हम क्या है, खत्म। हमसे उनसे वो हमें अप्रिशिएट करें, इसकी जरूरत नहीं, खत्म।
1: अपने पर विश्वास रखना काफी
0: है। हम तो मस्त, कोई बोल दिया ऐसे ओके, कोई बोल दिया ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ाई कर दिया ठीक है, नहीं बड़ाई किया, कुछ बुराई कर दिया, निर्मला मौर्य ऐसी, हाँ ठीक, क्या करना है, अपना कौन सा लग रहा है शरीर लगा क्या, ऐसे बनो, मस्त रहो। यही संदेश,
1: बहुत धन्यवाद मैम आपसे मिलके,
2: बहुत कुछ सीखने को मिला मैम।
0: सीखने को क्या मिला, मैंने हम जो हम खुद अपने जीवन में जो हम करते हैं, मैंने वही बताया। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं करूँ कुछ और दूसरे लोगों को कुछ और आइडियोलॉजी बताऊँ, नहीं, वही कहो जो आप करते हो, उसमें आइडियोलॉजी की जरूरत ही नहीं। हम इंसान हैं, गलती भी होती है, सब कुछ होता है, गुस्सा भी आता है, नेचुरल है। यदि ये सब ना हो तो फिर हम भगवान ही ना बन जाएं, और भगवान हमने कौन से देखे हैं कि हैं कि नहीं। इसलिए सब हो, गुस्सा भी आना चाहिए, महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए। जब आपको बनने की कुछ इच्छा ही नहीं, तो आप क्या बनोगे, कुछ नहीं बनोगे, कुछ करोगे ही नहीं। सब चीज हो, जब मनुष्य है तो सारा चीज, अच्छाई भी हो, बुराई भी हो, हम मनुष्य हैं, सब हो।
2: धन्यवाद।